है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

90.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना,

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं बढ़ते हैं।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना,

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन।

सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने बंदी।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: घर खर्च के पैसे 2000 जी,
1: ये राशन के 15000, सब्जियों के 2000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
6: बेटा तुम याद रखना,
5: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
6: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
7: ये लो भैया पानी।
6: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
8: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
9: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
10: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
9: जल है तो कल है।
11: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर, वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम
4: है, ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
9: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
10: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
11: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
10: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
12: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
13: सही है यार।
12: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
13: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। 1 लाख रुपए वो मैं रख लेता।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। भारत पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पास। पात्र टीजीटी को जनवरी 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान। अब 20 छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 जेवीटी होंगे तैनात। असिस्टेंट प्रोफेसर के भरे जाएंगे 30 पद। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भी जेएनजी से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिमाचल में आधार कार्ड से जुड़ेगी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अपने आधिकारिक आवास ओकओवर में नदौन विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुसंधान कर रहे पीएचडी शोधार्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आधुनिक शिक्षा और कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी शिक्षण संस्थान राज्य की शैक्षणिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार इन संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा आधुनिक आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। सरकारी स्कूलों में सीबीएसई प्रणाली शुरू करना, डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने जैसे निर्णय हिमाचल को अत्याधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की गरीब जनता के हितैषी हैं। उनके हर निर्णय की बुनियाद में लोकहित तथा गरीब कल्याण निहित है। उनका कहना है कि इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की पहचान और सूचियों में सुधार को लेकर की गई पहल अत्यंत स्वागत योग्य और सराहनीय है। इस पहल की सराहना इसलिए हो रही है क्योंकि इसने दशकों पुराने लचर सिस्टम को बदलकर सीधे वास्तविक गरीबों को हक दिलाने का काम किया है। उनका कहना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कागजों में सिमटी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को धरातल पर उतारने और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका ने दबाव बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी सीनेट ने लीडिंग से ऑफ अग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को 86-11 की भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के तहत रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान से होने वाली अमेरिकी आयात पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि ये टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है और बिल को कानून बनने के लिए आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त होकर नियमित हुए टीजीटी के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार की मंजूरी और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पात्र टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र शिक्षकों का अनुबंध अवधि का वेतन 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक संशोधित वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा उपनिदेशकों को आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की निर्देश दिए हैं। हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि जिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 20 या इससे अधिक है वहां तत्काल 2 जेवीटी शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सरकार के इस फैसले से अब ऐसे स्कूलों में सिंगल टीचर व्यवस्था खत्म होने की उम्मीद है। सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे प्राथमिक स्कूलों की संख्या और वहां उपलब्ध शिक्षकों की स्थिति का आकलन शुरू कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले किसी भी प्राथमिक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे ना रहे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षण क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां श्रेणी ए शिक्षण पदों के तहत की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी
11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केंद्र शिमला, क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला और विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान में ये नियुक्तियां की जाएंगी। जिस चेंजी ने सरकार के सामने नए सवाल खड़े किए हैं, 15 अगस्त को वही पीढ़ी प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए जाने वाले संदेश के केंद्र में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में चेंजी के सवालों, आकांक्षाओं और भविष्य को खास जगह देंगे। सरकार इसके लिए होमवर्क कर रही है। पीएमओ ने मंत्रालयों में ब्यौरा मांगा है कि युवाओं के लिए अब तक क्या हुआ, उसका असर क्या रहा है और आगे की योजना क्या है। मकसद ये कि लाल किले से कहीं हर बात के पीछे आंकड़े हों। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले पात्र लोगों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान आधार कार्ड आधारित व्यवस्था के तहत किया जाएगा। शुरुआत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन और राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन से होगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभागीय पोर्टल पर अपडेशन का काम चल रहा है। इसके चलते इन पेंशन के जून, जुलाई और अगस्त की किस्तें अभी तक जारी नहीं हो पाई हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार पोर्टल पर अपडेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगामी 2-3 दिन में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद लंबित किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। पहली बार पेंशनरों के भुगतान को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मछुआरों की नावों उपकरणों की खरीद को लेकर सरकार ने व्यापक अनुदान योजनाएं शुरू कर दी हैं। सरकार की फिशिंग बोट सब्सिडी योजना के तहत पात्र जलाशय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए नाव खरीदने के लिए 70% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नाव की लागत 50,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से 70% धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 30% राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गोविंद सागर, पोंग डैम, चमेरा, रंजीत सागर और कोल डैम सहित प्रमुख जलाशयों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बेड़े का आधुनिकीकरण करना है, जिससे मछुआरों की सुरक्षा, कार्यकुशलता और आय के अवसरों में सुधार हो सके। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को किसी पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य होना आवश्यक रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 50 दिन मछली पकड़ने का कार्य किया हो। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना
5: सर। सर सर सर,
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: चल हम
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

जी गुड मॉर्निंग, धर्मशाला कार्यक्रम हो गया है शुरू और मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में। और यह है आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज आप सभी से बातें करने के लिए और वैसे रहती ही हूँ हमेशा ही, लेकिन पिछली बार क्या हुआ ना कि हमारे स्टूडियो में कुछ काम काज चल रहा था, उसके चलते मैं आपसे मिलने अपने निर्धारित समय पर आ नहीं पाई क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन भी शायद उस दिन बंद था। और ये सब कुछ होता ही है क्योंकि हमें जब नवीनीकरण करना होता है, कुछ नए काम काज करने होते हैं, तो इस वजह से कुछ तकनीकियाँ चेंज करना भी ज़रूरी होता है, कुछ बदलाव चाहिए होते हैं, तो वही बदलाव हमने भी कुछ अपने ट्रांसमिशन में किए हैं, तो इस वजह से कुछ देर इसको भी तो रेस्ट चाहिए होती है ना। और जब बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी होती हैं, तो कई दिनों से आप भी महसूस कर रहे होंगे कि शायद हमारी आवाज़ें आप तक सही से नहीं पहुंच रही हैं, और अब पहुंच रही हैं या नहीं, अगर उस पर भी हमें कुछ प्रतिक्रियाएं मिल जाएं आप लोगों की तो बहुत अच्छा होगा। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 7018117091। सभी आप लोग जानते ही हैं, केवल अपनी फरमाइशों के लिए कार्यक्रम में फ़ोन ना करा करें प्लीज़। आप हमें कैसे सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज़ें आप तक कैसे पहुंच पा रही हैं, हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, और आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं हमारे रेडियो स्टेशन से, हमारे चैनल के थ्रू, उसके बारे में भी बात करा करें। अगर आप कोई अपने सुझाव रखना चाहें तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसी नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन बात आप वही करते ही हैं अपने फरमाइशी कार्यक्रमों में तो करते ही हैं, लेकिन हाँ श्रोताओं, अगर आप हमसे इस कार्यक्रम में बात करना चाहें जैसे गुड मॉर्निंग धर्मशाला या गुड इवनिंग धर्मशाला में, तो उसका एक निर्धारित समय होता है और वो हम आपको बताते ही हैं, कार्यक्रम में बता देते हैं कि कब आप हमसे बात कर सकते हैं, तो बस इंतज़ार कीजिएगा।

तो चलिए कार्यक्रम में अब कुछ भी ना कहते हुए एक सावन का गीत सुन लिया जाए, क्योंकि सावन का ही तो महीना है ना। और अगर ये पल बीत जाएंगे तो फिर हम इन दिनों को भी तरसते रह जाएंगे। हालांकि सावन अपने साथ अगर खुशियां लाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लेकर आता है जो कि हम नहीं चाहते हैं, उस पर बात करेंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गीत।

जी, सावन का महीना आ गया है। महीना तो बहुत समय से आया ही हुआ है श्रोताओं, और लेकिन अब ये क्योंकि सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं ना, पिछली बार भी था और इस बार भी, मतलब आज भी सावन का जो सोमवार है उसे आप ज़रूर मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना कर ही रहे होंगे, मना रहे होंगे ये सोमवार, और इसके लिए भी आपको आज सोमवार की शुभकामनाएं, और हमारे उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो जिन जो कि किसी न किसी वजह से आज का अपना ये खास दिवस मना रहे हैं।

और हाँ श्रोताओं, छोटी सी दिल में छोटी छोटी आशाएं तो होती ही हैं हमारी, और हमारी आशाओं पर भी कार्यक्रम में कुछ बात हम आज करेंगे। लेकिन ये वो वाली आशाएं नहीं हैं जो आपके दिलों में होती हैं, ये हमारी आशा वर्कर्स के बारे में बात होगी। बस जस्ट एक बात आपको बता देती हूँ कि कल आशा वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था। सारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के आशा वर्कर्स को सम्मानित किया गया। क्या कार्यक्रम था और कैसा रहा उसके बारे में कार्यक्रम में आगे बात करूँगी। थोड़ी थोड़ी सी एक्साइटमेंट छोड़ देते हैं ना आपके लिए ताकि आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें, और वैसे आप बने रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है हमारे श्रोता जो हैं हमसे जुड़े रहते हैं, हमारी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो अब चलें हम मौसम की तरफ कि धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस समय तापमान बना हुआ है 19 डिग्री सेल्सियस।

हवा में नमी है 97%। बाहर तो बादल बने हुए हैं, उमड़ घुमड़ कर आए ही हुए हैं, केवल बस बारिश होने का इंतजार है। लेकिन यहाँ गूगल बाबा द्वारा तो दिखाया जा रहा है कि बारिश तो हो ही रही है।

और अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो 10 अगस्त 2026 को धर्मशाला में मौसम काफ़ी ठंडा और बरसात वाला रहने वाला है, जहां अधिकतम तापमान ये तो 21 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, हमारे तो अभी इस वक्त 19 डिग्री है और न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो श्रोता, वैसे आप लोगों ने भी महसूस तो ये किया ही होगा कि जब थोड़ी सी भी बारिश थमती है और हल्का सा धूप का लिचकारा पड़ता है ना, तो उमस भरी जो गर्मी है वो ऐसे आती है जैसे तब हमें समझ में आता है कि नहीं नहीं, ठंड के दिन नहीं है भाई, सर्दी नहीं हुई। हालांकि मुझे पीछे कुछ दिनों, तो अभी 2-4 दिनों से मैं भी हल्की फुल्की सी जैकेट पहन ही रही हूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। अगर हम बड़े ही पहलवान बनने की कोशिश करेंगे और हमें पता है कि हमारा शरीर कैसा है, वो किस वक्त कौन सी चीज़ को सहन कर सकता है, तो उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए, है ना। तो मौसम की बात कर रहे हैं हम अभी, मैं ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी विषय से भटक जाती हूँ, नहीं हमें नहीं भटकना है। तो अभी बता दूँ आपको कि आसमान में भारी बादल छाए रहेंगे, तेज आंधी के साथ बारिश या भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें यानी हैवी थंडरस्टॉर्म पड़ने की 65% से 95% तक की संभावना है, और बाहर हमें ये चीज़ दिखाई दे भी रही है। और हवा की गति की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 4 से 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सा है, इसमें डरने वाली कोई खास बात नहीं है। हाँ, लेकिन बरसात के दिनों की बात ना वैसे सभी लोगों ने की, मैंने भी की यहाँ से कई बार, परंतु आप लोगों को ये कभी नहीं बताया कि बरसात के दिनों में अपने जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना, जैसे टीवी हो गया, ज़्यादातर लोगों के टीवी ज़्यादा उड़ते हैं, तो उसको प्लग इन मत करके रखिएगा। आप लोग सोचते हैं कि हमने बंद कर दिया बस उतना काफ़ी है, उतना काफ़ी नहीं होता है। मैं 2-3 बार इसी वजह से अपने टीवी को उड़ा चुकी हूँ, मतलब मैंने नहीं उड़ाया, वो खुद बिजली की गिरने की वजह से उड़ जाते हैं और हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमने तो टीवी बंद कर रखा है, लेकिन जब वो प्लग इन रहते हैं, चाहे वो बंद भी हो, तब भी बिजली का जो असर है वो पड़ जाता है, और जो हमारे खास करके LED TVs हैं उनकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, और फिर बनवाने में उतना ही खर्चा उसको लग जाता है। तो इस वजह, इसलिए थोड़ा सा प्लग ऑफ करके रखा करें अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अगर आपको लगे कि ऐसा मौसम हो रहा है जब बिजली गड़क रही है और बादल गरज रहे हैं, तब खासकर।

0: तो बहु बेगम फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। श्रोताओं, अब चलेंगे हम प्रादेशिक समाचारों की ओर और कुछ और जानकारियां जानेंगे हम हिमाचल प्रदेश के बारे में।
1: सुक्खू ने विपक्ष से प्रदेश हित में राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के सहयोग का किया आह्वान। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 70% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर बागवानों को राहत देने के बजाय प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। नाहन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी के कारण लोग परेशान, निजी अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर। और प्रदेश के कई जिलों में आज और कल भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से प्रदेश के हक के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के सहयोग का आह्वान किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने से राज्य को करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता के अधिकार का सवाल है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रदेश के हित में विपक्ष का साथ व सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश गंभीर वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है और विपक्ष को भी केंद्र के समक्ष हिमाचल के पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए। राज्य सरकार मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज, ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए 70% सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके तहत 5 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए 15 लाख रुपए, फ्रिज ड्राई यूनिट के लिए 10 लाख और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए 20 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ मत्स्य सहकारी समितियों, बेरोजगार युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, मछली विक्रेताओं और मछली पालकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को योजना का पारदर्शी और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि इसका लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि लगभग 5.5 हजार करोड़ रुपए की वार्षिक सेब अर्थव्यवस्था को राज्य सरकार के नए नियमों, प्रतिबंधों और दंडात्मक कार्यप्रणाली ने तबाह कर दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सेब सीजन चरम पर है और सरकार राहत देने के बजाय बागवानों पर अनेक बंदिशें थोप रही हैं। उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब बेचने पर नोटिस भेजकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश में व्यापक जन आक्रोश पनप रहा है और यदि सरकार ने अपने तानाशाही रवैयों को नहीं बदला तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी मॉनसून सत्र के दौरान इन मुद्दों को सदन में उठाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लोगों से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया है। सोलन जिला के न्यू कथेड़ में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वायु व जल को स्वच्छ रखने और मिट्टी के कटाव रोकने में पौधरोपण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय अस्पताल का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्यों के साथ साथ गतिशीलता लाने के निर्देश भी दिए। बिलासपुर जिला में घुमारवी उपमंडल के तहत फेटीधार क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पनोह में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस पार्क का उद्देश्य क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ साथ इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है। धर्माणी ने कहा कि कीरतपुर नेरचौक फोर लेन से सटे इस क्षेत्र में पार्क बनने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सिरमौर जिला के नाहन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि इसके चलते मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।
2: सिरमौर जिला के एकमात्र उच्च स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में चिकित्सकों के अनेकों पद खाली चल रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में पिछले करीब 11 दिनों से रेडियोलॉजी विभाग में रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली होने के चलते मरीजों को सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है और निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। वहीं समस्या को लेकर प्रबंधन का कहना है कि इस बारे में सरकार और विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत योगदान से प्रेरित है। शिमला जिला में स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध करवाने व स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने के उद्देश्य से क्लस्टर स्तर पर प्रोडक्ट सेल आउट हट स्थापित किए जाएंगे। ये हट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रमुख स्थानों पर विकसित किए जाएंगे ताकि स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिल सके। अधिक जानकारी के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: इस पहल से स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि होगी, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्थानीय हस्तशिल्प एवं कृषि आधारित उत्पादों को नया बाजार प्राप्त होगा। इन सेल आउट हट में शिमला के प्रसिद्ध स्थानीय उत्पाद जैसे सेब, सेब से बने मूल्य वर्धित उत्पाद, राजमा, लाल चावल, हिमाचली देसी घी, शहद, अचार, चटनी, बुरांश, मशरूम उत्पाद, अखरोट, स्थानीय दालें, ऊनी शॉल, टोपी, मफलर, हस्तनिर्मित ऊनी वस्त्र, बांस एवं लकड़ी के हस्तशिल्प तथा अन्य पारंपरिक उत्पाद बिक्री के लिए रहेंगे। यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादों के विपणन को सशक्त बनाएगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने तथा जिला की पारंपरिक विरासत और स्थानीय स्वाद को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से युवराज शर्मा।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के मुताबिक भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिसके देखते हुए लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है।
4: मेजर जो एक्टिविटी 10 तारीख से प्रदेश में बढ़ेगी उनमें से अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो 10 तारीख को जो है हमारा कांगड़ा जिले के अलावा सिरमौर और साथ ही कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट है 10 अगस्त के लिए, और वहीं पे 11 अगस्त की अगर हम बात करें तो कुल्लू, मंडी, सिरमौर के अलावा चंबा जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। 12 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में थोड़ी सी कमी आएगी, हालांकि भारी बारिश एक दो जिलों में हमें फिर भी देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट तक की जहां तक की बात है वो मुख्य रूप से हमारा चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू और मंडी जो जिले हैं वहाँ पे हमें काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज जो है 10 और 11 तारीख को देखने को मिलेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए IMD ने जो है एडवाइजरी भी जारी की हुई है।
1: वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण अब तक 118 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 18 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, किन्नौर कैलाश यात्रा फिर शुरू, 375 श्रद्धालु रवाना। दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल के अस्पतालों में अब मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। 100 करोड़ के ड्रोन सर्वे पर ब्रेक, अब सैटेलाइट से होगी फसलों की निगरानी, दैनिक जागरण की एक खबर है। हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में बनेंगे 1361 नए पक्के घर, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, केंद्रीय मंत्रालय ने दी मंजूरी। हिमाचल दस्तक के अनुसार बिजली बोर्ड को 325 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी, दूसरी तिमाही के लिए प्रदेश सरकार ने दिया पैसा। पंजाब केसरी के अनुसार हिमाचल कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली में आज होगी बैठक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से प्रदेश हित में राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के सहयोग का किया आह्वान। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 70% सब्सिडी देगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर बागवानों को राहत देने के बजाय प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। नाहन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी के कारण लोग परेशान, निजी अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर, और प्रदेश के कई जिलों में आज और कल भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

जी 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और आप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप लोगों ने सुन लिए और आपको पता लग ही गया है कि क्या क्या चल रहा है हमारे प्रदेश में। तो उन सभी श्रोताओं का स्वागत जो जिन्होंने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं और आज के कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। श्रोताओं, बता तो मैंने दिया ही है आपको कि आप से हम क्या क्या बात करेंगे। साथ ही में आगे बढ़ते हुए अब हम लेंगे आज का विचार। तो हमारा आज का विचार है कि कीमत किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि रास्ते किस्मत से नहीं आपके हौसलों और कर्मों से बनते हैं। जी हाँ, ये जो हम पंडितों के पास जा जा करके पूछते रहते हैं ना कि भाई क्या क्या कैसे होगा, तो वो बताते हैं कि आपकी उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, मतलब आप करोगे तो बहुत कुछ। अब मेरे में भी बहुत सारी पढ़ाई लिखी थी कि डॉक्टर इंजीनियर बनेगी ये लड़की, लेकिन अगर सही दिशा में हम अपने जो कार्य हैं वो करते नहीं हैं, उसके पीछे मेहनत भी तो चाहिए होती है ना। उतनी मेहनत में अगर थोड़ी बहुत चूक रह जाती है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, लिखा है, लेकिन सभी को तो हम प्रेरणा तो यही देते हैं ना कि आप तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, परंतु कुछ उसकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है और कहाँ तक नहीं। चलिए, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ अपने प्यारे दोस्त माइक तक तो पहुँच ही गए हैं और इस हॉट चेयर पे बैठ गए हैं, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं यहाँ आकर के बैठती हूँ सबसे पहले इसे नमन करती हूँ और फिर इस पर बैठती हूँ। और फिर मेरी कोशिश रहती है कि जो भी कार्यक्रम, मतलब जो भी जानकारी मैं यहाँ

या आप लोगों तक पहुंचाऊं, उसमें कुछ सच्चाई हो, कुछ ऐसी बातें हों जो आप लोगों के लिए सहायक हों, और साथ ही में प्यारे प्यारे से मनोरंजक गीत भी हों आप सभी के लिए। तो देखिए, फल की चिंता किए बिना हर दिन पूरी ईमानदारी से आप प्रयास करते रहें तो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। अब ये दो तीन विचार हमने एक इकट्ठे ही दाग दिए हैं, कुछ भी ले लीजिए आप अपनी सुविधा के अनुसार। और हाँ, बताना चाहेंगे कि एक श्रोता का मैसेज आ गया है कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छे से पहुंच रही है हम तक, यानी कि जो हमारा ये प्यारा माइक है ना, ये भी कभी कभी नखरे मारता है और हमसे रूठ जाता है, तो बस इसी रूठने मनाने में हमें कई दिन लग गए इसको मनाने के लिए। अब ये मान चुका है, अब देखते हैं दोबारा कब रूठता है। और किसी श्रोता का ये कहना भी है कि जी आपके जो गीत हैं और आप अभी अभी जो हमने पिछले दो गीत प्ले किए वो बहुत अच्छे रहे, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो गीत आप प्रस्तुत करने वाले हैं, यहाँ से चलाने वाले हैं, वो मनमोहक होंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम में हमने रखे हुए हैं सारे ज़्यादातर सावन के गीत, क्योंकि धीरे धीरे सावन का महीना भी आगे बढ़ता चला जा रहा है श्रोताओं, और ये भी कब बीत जाएगा। और अगर सावन की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी सी रहती है। और ये बात मैंने आपसे जैसे कि पहले बताया कि करनी थी 7 तारीख को, लेकिन किसी कारणवश आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो इसको ये आगे को खिसक करके आज तक पहुंच गया है, और आज हम ज़रूर बात करेंगे आपसे। तो चलिए हम फिर रुख कर लेते हैं एक खूबसूरत गीत का।

जी रे झूमे रे ऐसे जैसे बन मा नाचे मोर। और जी हाँ, सावन का महीना जो होता है उसमें मन में मोर तो नाचते ही हैं। लेकिन जैसे कि इस गीत में कहा गया कि जिनके बलम बैरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। तो भाई, जैसा सावन के महीने में हमने कहा कि मन में मोर नाचते हैं, लेकिन कुछ परेशानियाँ कुछ दुख भी आते हैं हमारे जीवन में, जब हमारे प्रियतम हमारे साथ नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं। और कई लोगों के लिए तो भाई ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियां जो हैं वो कई कई वर्षों तक अपने मायके भी नहीं जा पाई होती हैं, उनके लिए भी ये जो महीना होता है बड़ा दुखदायी होता है। तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आपके लिए सावन का महीना कैसा है और क्या क्या आप करते हैं सावन के महीने में, मतलब कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाते हैं, या अगर नहीं बनाते हैं तो कौन कौन सी मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं, और कहाँ कहाँ पर अगर आप बाहर कहीं रहे तो वहाँ की आप बातें हमें बता सकते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा, अभी नहीं, अभी सुन लीजिए थोड़ा सा कार्यक्रम और उसके बाद हम आपकी फ़ोन कॉल्स ज़रूर लेंगे। तो पता तो लग ही गया है कि हम सावन के महीने की बात कर रहे हैं, और उसमें अगर आपको कोई परेशानियां हो रही हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं आप, और क्या क्या आपको अच्छा लगता है इस महीने में, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हम फिर से कह रहे हैं आपसे कि हमारा फ़ोन नंबर है 7018117091। और ये फ़ोन नंबर हमेशा मैं शशि का मुंह देख करके ही बोलती हूँ। शशि मुझे कहती है कि पता नहीं, जैसे मेरे मुंह पे ये नंबर लिखा हुआ है। एक्चुअली मुझे कंसंट्रेशन ही उसका चेहरा देख करके आती है कि मैं एक जगह कंसंट्रेट करूँ और फिर मैं इस नंबर को आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, आप तक ये बातें पहुंचाने के पीछे ना हमारे स्टूडियो में बहुत कुछ चलता है जो शायद आप तो नहीं देख पाएंगे कभी भी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बहुत मौज मस्ती करते हुए हम लोग भी यहाँ से, मतलब पर्दे के पीछे से भी अपना ऐसा ही माहौल बनाए रखें, तो ही ये जो कार्यक्रम है ये आप लोगों के दिल तक सीधा पहुँचता है। बातें और भी हमें आपसे बहुत सारी करनी थी, लेकिन हम अपनी ही बातों में मशगूल हो जाते हैं। आपको बता देती हूँ, आज विश्व शेर दिवस है। शेरों की बात हमारे इस कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले सुमन ने की है, लेकिन वो राष्ट्रीय शेर दिवस था और आज है विश्व शेर दिवस। और आज विश्व जैव ईंधन दिवस भी है। और एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है आज इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बारे में कार्यक्रम में बताऊंगी आपको आगे। और अब ढूंढ रही हूं आप सभी के लिए एक और गीत। चलिए एक विरह का गीत हो जाए, थोड़ा सा संजीदा होने वाला है माहौल, तो दिल थाम के बैठिए। चुपके चुपके फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

बड़ा संजीदा सा गीत था ना ये, है ना। अभी अभी तो हमने बात की कि जिनके बलम बैरी गए हैं विदेशवा, उनके लिए या कुछ लोग जिनसे उनके अपने बिछड़ जाते हैं, उनके लिए भी सावन जो है वो दुखदायी होता है। और उन लोगों के लिए जिनके घर शायद इस सावन ने तबाह कर दिए, जमी दोस्त हो गए, श्रोताओं कार्यक्रम में सावन के बारे में बात करते करते हमें अपने आज के दिवसों के बारे में भी बात करनी है और आप सभी को बताना है कि आज क्या क्या खास है। शेरों के संरक्षण और उसके घटते आवाज़ के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस। और कितने सारे मीम्स भी हैं ना कि भाई अगर कोई ऐसा कहते हैं ना कि कोई किसी को डरपोक कह दे तो वो कहता है नहीं नहीं भाई हम तो शेर हैं। तो यानी शेर की तुलना जो है वो बलवान से की जाती है, मतलब उपमा जो है वो बलवान व्यक्ति जो है उसकी उपमा शेर कह करके दे दी जाती है, रूपक दे दिया जाता है कि भाई बहुत ताकत है इसमें तो, ये तो शेर जैसा है। और आज विश्व जैव ईंधन दिवस भी है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन और विकल्प यानी गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसी दिन 1893 में सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन चलाया था। और हाँ, आज हम लोगों के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा दिन है। और श्रोताओं आज हमारे लिए भी एक बहुत प्यारा सा दिवस है और वो ये है, क्या है पता है आपको? ब्लॉगर्स जाग जाओ। तो जितने भी हमारे ब्लॉगर्स हैं उन सभी के लिए आज है अंतर्राष्ट्रीय व्लॉगिंग डे। तो आप तो जानते ही हैं कि हम भी ब्लॉगर हैं भाई, हम भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट से डालते रहते हैं। अभी इस कार्यक्रम से पहले ही एक छोटी सी रील मैंने अपने प्रोफाइल पर डाली है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उसमें मैंने बड़ी सारी जानकारी दे दी है। अब कभी समय मिलता है तो हम आपको दे देते हैं कार्यक्रम से पहले जानकारी, और कभी समय नहीं मिलता है तो चलिए ऐसे भी कार्यक्रम चलता है, क्योंकि इस कार्यक्रम का समय तो फिक्स है ना, हमारी उस ब्लॉगिंग का समय जो है वो इधर उधर हो सकता है। लेकिन कई लोग जो व्लॉगिंग करते हैं ना वो बहुत पाबंद होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस वक्त हमें क्या बात जनता तक पहुंचानी है, यानी अपने जो ऑडियंस है श्रोता हैं उन तक पहुंचानी है, देखने वालों तक पहुंचानी है, और उसी समय पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख देते हैं। हम थोड़ा सा लेट लतीफ़ हैं, हो जाता है कई बार। इतने सारे काम अगर एक साथ करने हों तो किसी न किसी काम में थोड़ी बहुत चूक तो होती ही है। तो डिजिटल युग में वीडियो ब्लॉगर्स और उनके कंटेंट क्रिएशन को सराहने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। और हम तो ये कहेंगे कि ब्लॉगर्स रोज़ रोज़ ही अपना

एक गीत ढूंढ रही हूँ मैं आप सभी के लिए। बस बैठे रहिए, थोड़ा सा कीजिए इंतजार और कान लगाए रखिए रेडियो सेट्स के साथ। ये पुरानी सी फिल्म का एक गीत है, आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम आशीर्वाद।

और श्रोताओं, सावन के गीतों के साथ साथ आपको ये जानकारी मैं दे देती हूँ कि बस अभी थोड़ी ही देर में हम दोबारा से फेसबुक पेज पर लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा और साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा।

जी श्रोताओं, आशीर्वाद फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैसा लगा आपको गीत ये जरूर बताइएगा आप। और हम फेसबुक पेज से लाइव भी आ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज के लाइव स्ट्रीमिंग में भी। और हमारे दो फेसबुक पेज हैं, एक है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला और एक है गुंजन धर्मशाला। तो इस वक्त हम गुंजन धर्मशाला वाले पेज से लाइव हैं, जिसका कि रंग बिरंगा सा यानी बड़ा कलरफुल सा लोगो है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न लोगों में अक्सर आप लोगों में होती होगी कि आप बोल तो देते हैं कि फेसबुक पेज से लाइव हैं, लेकिन कहाँ से लाइव हैं भैया, आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप लोगों की स्क्रीन पर तो हम दिख ही जाते हैं लाइव, तो हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, फेसबुक पेज पर भी, और रेडियो पर तो आप हमसे बने ही हुए हैं हम जानते हैं।

अब हम बात करेंगे अपने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। तो हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसने तिरंगे के साथ हमारे रिश्ते को सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित न रख करके हर नागरिक के दिल और घर से इसको जोड़ दिया है।

ये अभियान जो है वो सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें कि देश के अमीर गरीब, जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति अपने घर, दुकान और दफ्तर पर तिरंगा लहराता है इन कुछ खास दिनों में जो कि आपको अलॉट किए जाते हैं। जी हाँ, पहले ऐसा था कि आप तिरंगे का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अपने घरों पर नहीं फहरा सकते थे, कहीं और आप उसे नहीं, लेकिन हाँ साल में कुछ एक दिन ऐसे आते हैं स्वतंत्रता दिवस के आसपास में जबकि ये दिवस शुरू कर दिए जाते हैं, ये जो अभियान है ये शुरू कर दिया जाता है और बाकायदा आपको जो तिरंगे हैं वो पोस्ट ऑफिस से मिल जाते हैं और भी कई जगह पर मिल जाते हैं जहाँ से आप ले सकते हैं और अपने अपने घरों पर फहरा सकते हैं। और फेसबुक पेज पर हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए प्लीज। और किस तरह का लग रहा है आपको कार्यक्रम सुनने में, गीत कैसे लग रहे हैं, सावन के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो आप फोन लाइन पर आप जुड़ करके कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी अपना कमेंट जो है वो टाइप करके लिख सकते हैं, हम आपका नाम के समेत वो कमेंट आपका पढ़ देंगे। और श्रोताओं अभी बता दें कि अगस्त 2026 में चल रहा यह अभियान स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम की भावना को समर्पित है और इसके तहत लोग तिरंगा फहराने के साथ साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे 150 वर्ष पूरे हो गए हैं वंदे मातरम गीत को। और इसके साथ ही आपको ये लिबर्टी भी मिलती है कि अपने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी खींच करके हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड आप कर सकते हैं और डिजिटल रूप से देश के प्रति अपना सम्मान दर्ज करा करके उसमें भागीदारी प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

क्योंकि ये हर नागरिक का तिरंगे के साथ एक भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि पहले हम सिर्फ ये देखते थे कि कुछ सरकारी दफ्तरों के ऊपर और सरकारी इमारतों या फिर केवल स्कूल कॉलेजेस के में ही ये तिरंगा आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब इन कुछ खास दिवसों पर आप इस तिरंगे को अपने सीने से लगा करके अपने छत पर लहरा सकते हैं। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है ना जब हम उसके साथ सेल्फी लेते हैं, और उस चाहे हम लोग अपलोड कहीं करें या ना करें, लेकिन हम अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाते हैं। जब एक ही समय पर पूरे देश के करोड़ों घरों पर एक साथ तिरंगा लहराता है तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, और ये भारत की विविधता में एकता को भी दर्शाता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को भी दर्शाता है। पहले क्या क्या नियम थे ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर समय रहेगा कार्यक्रम में तो हम ज़रूर इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल एक और गीत।

तो दोस्तों, सरकार ने फ्लैग कोड में बदलाव करके अब हमें ये अधिकार दिया है कि हम गर्व से अपने घरों पर 24 घंटे यानी दिन रात भी तिरंगा फहरा सकते हैं। और अब तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों की शान नहीं बल्कि आपके और हमारे घर की पहचान भी है। तो देर किस बात की है। इस स्वतंत्रता सप्ताह में अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं और सम्मान के साथ फहराएं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो 1952 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और 9 अगस्त की आधी रात को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद 10 अगस्त को पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और रैलियां भड़क उठी थी, क्योंकि जनता ने स्वतंत्रता संग्राम की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले ली थी। और आपको ये भी बता देती हूँ कि 7 और 8 अगस्त से जो स्वदेशी आंदोलन है वो भी शुरू हो गया था, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, और यही वो कुछ दिन थे जिन दिनों ने हमें स्वतंत्रता की ओर, ये जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा 15 अगस्त, वहां तक ये दिन हमें लेकर गए खींच के। ১৮৬০ में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अग्रणी विद्वान और पुरुत्थान पंडित विष्णु नारायण भालखंडे का जन्म भी हुआ था। खैर, इनके बारे में हम, ये जो वर्षगांठ है और साथ में जो पुण्यतिथियां हैं, इसके बारे में कार्यक्रम में आगे बात करते हैं। हम फिलहाल ये बता दें कि 1894 में भारत के चौथे राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित वराहगिरी वेंकट यानी वीवी गिरी का जन्म हुआ था आज ही की तारीख में।

और साथ में आपको ये भी बता दूं, मैं श्रोताओं कि 7 अगस्त को हमारा हैंडलूम दिवस भी मनाया जाता है, जिस पर कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। जैसा कि मैंने कार्यक्रम में आपको पहले भी बताया कि कुछ वजह रही, नहीं आ पाई थी मैं आपसे मिलने के लिए उस दिन। और ये जो हमारा हैंडलूम दिवस है ना, इसे हमारी भारत सरकार ने इसलिए चुना इस तारीख को क्योंकि इसी तारीख को स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था गांधी जी के कहने से।

और वाकई में हमने पूरे विश्व में तिरंगे का जो परचम है वो लहरा तो दिया ही है। एक श्रोता और हमें देख रहे हैं फेसबुक पेज से लाइव, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका हमें नाम पता नहीं चल रहा है, कोई कमेंट करेंगे तो आपका नाम भी फ्लैश करेगा। और जितने भी श्रोता अभी हमसे फेसबुक पेज पर लाइव हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर 7018117091 पर बात भी कर सकते हैं लाइव, कि अगर आप सावन के बारे में बात करना चाहें तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, कुछ अपने देश के बारे में बात करना चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे ऑप्शन हम आपको दिए चले जा रहे हैं, आगे आगे हो सकता है कोई और बात भी हो जाए तो उस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। चलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का बड़ी बेसब्री से। बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। और जब सावन आता है ना तो कैसे आता है, और सावन का रंग क्या होता है आपको तो पता ही है, सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, जो मैंने कल तक तो पहनी हुई थी लेकिन आज मुझे जल्दीबाजी में याद नहीं रहा तो छोड़ आई हूँ वहीं अपने टेबल पे। लेकिन आप लोगों के हाथों में ज़रूर होंगी, मुझे पता है हमारी सारी जितनी भी महिलाएं हैं लड़कियां हैं बड़ी उत्साहित रहती हैं सावन के महीने के लिए, झूले डाले जाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। खैर हमारे पास भी बहुत सारे गीत हैं, उसमें से एक गीत ये रहा आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

दो बीघा जमीन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अश्विनी सुकेतिया जी हमें गुड मॉर्निंग कर रहे हैं फेसबुक पेज लाइव से, और हम भी आप सभी को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं यहाँ हमारे रेडियो से लाइव। और जैसे आप हमें सुन रहे हैं उसी तरह से फेसबुक पेज पर लाइव देख भी रहे हैं आज के ख़ास दिवस पर। ख़ास तो हमेशा ही हमारे रोज़ ही दिन होते हैं, लेकिन आज स्वतंत्रता संग्राम की बात भी हो रही है, सावन की बात भी हो रही है, तो भाई हमारे लिए तो ये कुछ दिन जो होते हैं ना, ये बड़े ही ख़ास होते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी हमसे मुखातिब हों, हमें यहाँ जो फेसबुक पेज से आप ये जो कर रहे हैं कमेंट्स और लाइक भी कर रहे हैं, तो कम से कम आप हमसे बात भी कीजिए। तो बात के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 7018-11-7091। फरमाइशें तो आप करते हैं अपने जो गीतों की फरमाइशें हैं वो तो आप करते ही रहते हैं। देखिए अभी एक गीत की फरमाइश आ गई है हमें, मोहरा फिल्म का गीत, कोई भी गीत सुनना चाहते हैं कोई श्रोता हैं। लेकिन आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि जो गुड मॉर्निंग धर्मशाला और गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम है, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, ये पहले से सेट होते हैं, प्री सेट होते हैं। इनकी जो क्यू शीट्स होती हैं ना, वो हमारी बनी हुई होती हैं पहले से, और हमें यहाँ पर डिमांड मतलब देनी होती है यहाँ जो बच्चे हैं जो स्टाफ हैं उनको कि हमने ये गीत यहाँ से प्ले करने हैं, और उन्हीं गीतों के अकॉर्डिंग हम कार्यक्रम रखते हैं, या फिर कार्यक्रम के अकॉर्डिंग हम जो गीत हैं वो चुन करके आपको सुनवाते हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि वो गीत आप सुने, तो इन गीतों में बदलाव करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हो जाता है हमारे लिए, और ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है भी नहीं। हाँ, इस कार्यक्रम में आप अपनी बात ज़रूर रख सकते हैं, आप हमसे बात ज़रूर कर सकते हैं। बाकी गीत हमें ऐसा लगता है कि जो हम गीत आपको यहाँ से प्ले करते हैं वो आपको पसंद आते ही होंगे। और ये जो गीत है मोहरा फिल्म का गीत, ये हम आपका फरमाइश किसी और सेक्शन तक पहुंचा देते हैं, वहाँ पर आप अपनी फरमाइश का ये जो गीत है ये ज़रूर सुन पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है, आपका क्या मानना है वो आप ज़रूर बताइएगा, कॉल कीजिएगा, हमारे कार्यक्रम में हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब टाइम की कोई सीमा लिमिट है नहीं है, मतलब आप अब 10 बज गए हैं, 10:18 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, तो आप फ़ोन अब कर सकते हैं, क्योंकि आज सावन की बात कर रहे हैं हम, और साथ ही में अपने स्वदेशी आंदोलन की बात कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की ओर तो नहीं, बस स्वतंत्रता दिवस की ओर हम अग्रसर होते चले जा रहे हैं, और इसी स्वतंत्रता संग्राम की वजह से। और देखिए हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग में भी अश्विनी सुकेतिया जी का मैसेज आ गया है फिर से, गुड मॉर्निंग मैम जी, आपको भी बहुत बहुत गुड

मॉर्निंग, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। और दोस्तों अब आपको बता दूं कि एक और दिवस भी है, स्काई स्क्रेपर अप्रिसिएशन डे। जी हाँ, ये गगनचुंबी इमारतों और के वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है आज का ये दिवस। और किसी देश में तो लेजी डे भी मनाया जाता है आज की तारीख को, क्योंकि मुख्य रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों में लोकप्रिय एक मज़ेदार दिवस है जो लोगों को काम से ब्रेक लेकर के आराम करने के लिए प्रेरित करता है। और वैसे ये दिन सच में थोड़े से लेजी डे होते हैं ना, कि बाहर बरसात हो रही है, हमें बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। परंतु मैंने सुना था कि सुमन ने अपने किसी कार्यक्रम में ये आपको बताया था बरसात में भीगने का के जो फ़ायदे हैं वो भी बताए थे। और मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे ना पहले, उन बातों में भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो होती ही थी कि बरसात में भीगने का अपना आनंद भी है और स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक भी होती थी। परंतु यहाँ पर मैं एक बात आपसे ज़रूर कह देना चाहती हूँ, जब पहली पहली बरसात होती है ना, तब बिल्कुल मत भीगा करिए, क्योंकि हवा में इतनी सारी जो कमियाँ होती हैं, डस्ट होती है और भी बहुत सारे केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस बरसात के साथ नीचे धरा पर आते हैं, धरती पर आते हैं। तो उस बरसात में भीगना, पहले एक दो बरसातों में भीगना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, उसके बाद आप जम के भीगिए और आनंद उठाइए, कोई एतराज़ नहीं।

जी ये मौसम भीगा भीगा है। गीत आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। भाई देखो, कार्यक्रम में हम इतना मगन हो जा रहे हैं ना, और हो जाती हूँ मैं कि मैं अपना नाम बताना ही भूल जाती हूँ आप सभी को। कैसा लग रहा है कार्यक्रम आपको, ये ज़रूर बताइएगा। और हमारी एक श्रोता का कमेंट आया है, वो कह रही हैं कि सावन के गीत आज इस कार्यक्रम के थ्रू सुन रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। नाम है इंदु जी। धन्यवाद इंदु जी, आपका बहुत बहुत। और आप हमें रेगुलर सुनती हैं, रेगुलर हमें फेसबुक पर देखती भी हैं, कमेंट भी करती हैं, लाइक भी करती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो बात कही है ये दिल से कही है, वाकई में मज़ा आ रहा होगा आपको उस तरफ बैठ कर के।

और अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम चलते हैं 7 तारीख में। आप कहेंगे भाई क्यों जा रहे हैं पीछे, पीछे मुड़कर तो देखना ही नहीं चाहिए, कभी कभी देख लेना चाहिए। अब क्यों देख रहे हैं हम पीछे मुड़कर के, वो आपको, मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। दोस्तों 7 तारीख को दिल्ली में भव्य समारोह चल रहा था, जहां पर कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी बुनकरों को सम्मानित कर रही थी। और आपको पता है उस एक एक पल की साक्षी मैं भी रही, मैं भी उसी कार्यक्रम में मौजूद थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और आपको पता है कैसे कैसे सच है, जैसे ये सच है कि आप इस समय रेडियो सेट पर कान सटा करके हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमें फेसबुक पेज से लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। उस भव्य समारोह में संत कबीर पुरस्कार दिए गए लोगों को, और जो भी वहां से कहा गया रेडियो के माध्यम से, उसका एक एक शब्द जो है मेरे अंदर रोंगटे खड़े कर रहा था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं ठीक उसी हॉल में, उसी ऑडियंस के बीच में अगली पंक्ति में बैठी हुई हूँ, और जैसे कि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही कोई पुरस्कार मिलने वाला है, और अभी जस्ट मेरा नाम अनाउंस होगा और मैं उठूंगी और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा वो पुरस्कार प्राप्त करूंगी। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स जगती हैं जब हमारे देश में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, और कार्यक्रम इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हमारे देश के कुछ लोग हैं जो वो इस तरह के कार्य करते हैं, बुनकर हैं जो वो हैंडलूम की चीज़ें बनाते हैं, और उन सभी से प्रेरणा लेकर के अगर हम वो चीज़ें कर नहीं सकते हैं तो कम से कम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो फिर हुई ना मैं उसी कार्यक्रम की साक्षी, क्या कहते हैं आप?

और वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। और आपको बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में साड़ियों की बात कर रही हूँ तो बनारसी साड़ी बनाई जाती है हथकरघा से, और शुद्ध रेशम के ऊपर सोने और चांदी के धागों का, जरी का बेहद ही महीन और भारी काम होता है वो। मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ी का चलन है और ये कपड़ा बहुत हल्का, पारदर्शी और रेशम और सूती यानी कॉटन के धागों के मिश्रण से बनता है। तमिलनाडु में कांचीपुरम साड़ी होती है, अपनी चमक, चौड़े सुनहरे बॉर्डर और भारी सिल्क के लिए दुनिया भर में मशहूर। ओडिशा में संबलपुर पूरी साड़ी और इसे बांधा कला भी कहते हैं, जिसमें कि बुनाई से पहले ही धागों को टाई एंड डाई रंगा करके और उसमें जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, ज्यामितीय डिज़ाइन जिन्हें हिंदी में कहते हैं, वो होते हैं। तेलंगाना में पोचमपल्ली और इक्कत की जो साड़ियां हैं वो बनाई जाती हैं। अब तो साड़ी छोड़ करके सूट भी बनना शुरू हो गए हैं, यानी कपड़ों के हर तरह के आइटम बनते हैं और भारत के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है इसे। इसके पैटर्न बेहद आधुनिक और जियोमेट्रिकल पैटर्न होते हैं। श्रोता का कमेंट आया है कि हम सारे काम छोड़ करके आपका प्रोग्राम सुनते हैं और सुन रहे हैं, धन्यवाद। अब महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी का चलन है, इसके पल्लू पर मोर, तोते और फूलों के बेहद खूबसूरत और उभरे हुए डिजाइन हाथ से बुने जाते हैं श्रोताओं। और राजस्थान में आपको मिलती है कोटा डोरिया की साड़ी। ये साड़ी चौकार चेक के पैटर्न में बुनी जाती है, जो कि गर्मियों के लिए बेहद हल्की और आरामदायक होती है। पश्चिम बंगाल में बालूचरी साड़ी और इस साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर महाभारत और रामायण के पौराणिक दृश्यों को धागों से उकेरा जाता है। असम में मूंगा सिल्क साड़ी और ये असम का सुनहरे रंग का प्राकृतिक सिल्क है, जो कि अपनी चमक और मजबूती के लिए जाना जाता है। और आप कहेंगे देश भर की बात तो कर ली, हो सकता है कुछ देश के एक आधा कोई हिस्सा छूट भी गया हो, लेकिन हिमाचल की बात नहीं की तो हिमाचल पर भी आ रहे हैं भाई। हिमाचल पर आएंगे जरूर एक बड़ा ही प्यारे सावन के गीत के बाद। ढूंढ रही हूं मैं अब गीत आपको कौन सा सुनवाया जाए अगला। तो सावन की बात हो रही है, चलिए हम पूछ लेते हैं सावन से ही क्या कहता है ये सावन।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।
1: सावन क्या कहता है, कुछ कहता है।
2: हेलो
0: जी, क्या कहता है सावन? ये तो अब आप ही जाने कि सभी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं कि सावन ये कह रहा है वो कह रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आइए लेते हैं हम फोन कॉल। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं?
2: धर्मशाला से बोल रहा हूँ, अनिल।
0: अरे अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, मतलब आपके अपने कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
2: गुड मॉर्निंग
0: जी, क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? एक मिनट, आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी बात को कट शॉर्ट रखिएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे और भी श्रोता हैं जो शायद फोन लाइन पर हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सभी को आज फोन पर लें, मतलब कॉल पर लें।
2: जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी
0: जी
2: बिल्कुल। मैम पहले तो आपने ये जो संगीत सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमने ये जो मूवी देखी थी वो इन्हीं दिनों देखी थी।
0: अच्छा,
2: जो मूवी देखी थी ना मैं, वो मेरा गांव मेरा देश, वो इन्हीं दिनों देखी, बरसात के
0: दिनों देखी थी। अच्छा जी
2: हाँ, और जो सावन के महीने की बात कर रहे थे, ये मुझे सबसे प्रिय महीना है।
0: अच्छा, उसकी कोई खास वजह?
2: हाँ, ऐसा कि हम बरसात के दिनों जब बचपन में छोटे छोटे थे तो हम अपने जो पशुधन था जो गाय वगैरह, इन दिनों को दो दो महीने लगातार चलाते थे।
0: अच्छा,
2: और हम लगातार भीगने का पूरा आनंद लिया करते थे, पूरा प्लेजर मूड में रहते थे।
0: आजकल तो माता पिता जो है वो बच्चों को भीगने नहीं देते हैं ना, उसका उसकी अपनी वजह हो सकती है। खैर चलिए,
2: इसका मेन रीजन ये है कि आजकल मोबाइल आ चुका है।
0: अच्छा,
2: आजकल लोग
0: मोबाइल ना भीग जाए शायद इसलिए।
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये लोग इसमें मतलब इंटरनेट में ज्यादा बिजी हो गए नेट में। हमारे टाइम में तो कुछ कोई सुविधा नहीं थी।
0: अच्छा, मुझे लगा कि शायद बच्चे मोबाइल लेकर के बाहर को भागेंगे, मोबाइल भीग जाएगा, शायद मोबाइल के ज्यादा ध्यान है और बच्चों का नहीं। हाँ जी बताएं, मजाक है खैर।
2: और हाँ, और तीसरी बात है कि आपने अभी तिरंगा की बात करी।
0: हाँ जी,
2: तो ये महीना अभी आजादी का महीना है, सेलिब्रेट करते हैं।
0: हाँ जी,
2: और मैं तिरंगे के बारे में एक बात बोलूंगा। लोग क्या करते हैं कि तिरंगे को आज के दिन खरीद तो लेते हैं, पर उसको यूं ही तिरंगा करने यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही आपने ये कहा, और ये मैं कहना चाह रही थी,
2: कचरे में ना फेंके।
0: हाँ जी बिल्कुल,
2: क्योंकि इससे ऐसा कि तिरंगे के पीछे ना चले, हमारी किस 8,62,000 के लगभग लोगों ने कुर्बानी दी है। तो

0: उन लोगों को पूछो जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए दे दिया है
1: जी,
0: तो उस योगदान को याद रखते हुए उस तिरंगे की इज्जत कीजिएगा और जो क्रांतिकारी जितने भी हैं उन सबको सम्मान कीजिएगा, हम तो ये चाहते हैं
1: जी जी। हाँ
0: तो मैं तो यही चाहूंगा, बाकी तो
1: जब ये स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी होते हैं और आप कह रहे हैं कि आप स्टेडियम के पास ही रहते हैं, मतलब एक कार्यक्रम में आपने हमें बताया था, तो क्या आप पुलिस ग्राउंड में जाते हैं या यहाँ अपना जो शहीद स्मारक है वहाँ पर जाते हैं जब कार्यक्रम होते हैं तो सम्मान देने के लिए वीर शहीदों को?
0: आप तो नहीं जाते?
1: अब नहीं,
0: हम बचपन में जो जाया करते थे।
1: अच्छा,
0: तो अब तो खैर अब नहीं जाते,
1: बच्चों को भेजते हैं।
0: है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे देश के जिन लोगों ने समाज इज्जत हमें आजादी बख्शी है उन लोगों को सिर्फ एक दिन ही याद न कीजिएगा
1: जी,
0: वो हमारे लिए सम्मान नहीं है, हमारे लिए पूरा साल भर ही 362 दिन ही वो सम्माननीय लोग है, आदरणीय लोग है
1: जी,
0: तो हमें कहीं ना कहीं उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, धन्यवाद बातचीत करने के लिए बहुत बहुत, और आप इसी तरह से कॉल करते रहें और
0: हम
1: आपसे बातचीत करेंगे, और अगर श्रोताओं को कुछ समझने में परेशानी होगी तो हम आपकी बात स्पष्ट रूप से श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे जी। धन्यवाद
0: जी, जी धन्यवाद
1: अनिल जी। तो देखा श्रोताओं, आपने अनिल जी ने कितनी सही बात की, सावन के बारे में भी बात कर ली और साथ ही में अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि बचपन में कैसे वो जाते थे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और कितनी खुशियां बटोरते थे। खैर बचपन तो बचपन ही होता है और मुझे लगता है आज के गीत सुन करके आप लोगों को भी अपने बचपन की याद ज़रूर आ रही होगी।

और गीत तो हमेशा ही आप कार्यक्रम में सुनते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ साथ ही साथ कि जैसे आपने अपना बचपन एंजॉय किया है ना, उसी तरह से अपने बच्चों को भी अपना बचपन एंजॉय करने दीजिए। किसी चीज़ के लिए रोकिए टोकिए मत। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अगर अति करने लग जाएं, बहुत ही ज़्यादा भीग रहे हैं बारिश में, तो आपका बोलना लाजिमी भी है, उन्हें सही गलत की पहचान कराना ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसे ही अननेसेसरी अनावश्यक उन बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए बिल्कुल मत रोकिए। जैसे कि बच्चे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं कई बार और अपनी पसंद के फल वगैरह तोड़ करके खाने लग जाते हैं, आपने भी तो ये सब किया है। याद कीजिए ना वो दिन और इंजॉय कीजिए इस गीत को।

0: ये रिमझिम के गीत भी यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन श्रोताओं कार्यक्रम में मैंने आपसे कहा था ना कि हम हिमाचल के बारे में भी आपको बताएंगे कि हिमाचल में हैंडलूम का क्या क्या काम होता है और कहां कहां होता है। गीत के साथ साथ में आपको ये जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी है। समय भी हमारे पास कम रह गया है, अब चलते चलते हम 10:45 तक पहुँचने वाले हैं, अभी 43 हुए हैं, बस 2 मिनट के अंदर ही 2 मिनट ये भी बीत जाएंगे। और अब आपको बता दूं कि कुल्लू शॉल जो है ये हिमाचल का सबसे पहला GI टैग प्राप्त उत्पाद है। इसे पिटलूम पर बुना जाता है और इसकी मुख्य खासियत ये होती है कि इसके दोनों किनारों पर बने रंग बिरंगे ज्योमेट्रिकल डिजाइंस और फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं। और इन्हीं ख़ास पैटर्न्स की वजह से ये बहुत पसंद किया जाता है लोगों में। और हम भी अगर कब कहीं हमें इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं ना, तो बड़ा मन ललचाता है कि हम ये ले लें।
1: मेरा दिल भी है दीवाना।
0: आगे चलते हैं हम किन्नौर की ओर। तो किन्नौर की बुनाई अत्यधिक बारीक और समय लेने वाली होती है और इसके एक एक डिज़ाइन को हाथ से सुई जैसे तीली की मदद के धागे से पिरो करके बनाया जाता है। इसमें मध्य एशियाई कला की झलक मिलती है।
1: कुछ भी
0: और एक खास बात ये कि ये भी GI टैग प्रमाणित है। और श्रोताओं सिरमौरी लोइयों की तो क्या ही बात करें। सिरमौरी क्षेत्र का पारंपरिक पुरुषों का ऊनी गाउन या फिर शॉल, जिसे कि स्थानीय बुनकर पूरी तरह से हाथ से तैयार करते हैं, इसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और फिर अगर इन सब की बात करेंगे तो हमारी फिर हिमाचली टोपियां क्यों पीछे रहें, तो हिमाचल की शान मानी जाने वाली किन्नौरी टोपी, इस पारंपरिक टोपी के आगे का हरा या फिर रंगीन मखमली बैंड जो होता है, उसकी ऊनी बुनाई भी हथकरघा कारीगरों की ही देन होती है। बिल्कुल इसी लाइनों की तरह की बड़ी लंबी लंबी जी की बातें और बड़ी छोटी है बरखा की रात, हम तो ये कहेंगे कि हमारे मन की बातें बहुत लंबी लंबी हैं जो कि हमें आप तक पहुंचानी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे भी ना हमें कम पड़ जाते हैं कि हम आपसे अपनी सारी बातें कह पाएं। मतलब कार्यक्रम के आखिर में कहीं ना कहीं ये मलाल रह ही जाता है कि ये बात नहीं हुई, वो बात नहीं हुई और फिर उस पर अगर हमारी मुलाकात ही ना हो पाए, जैसे कि पीछे मेरे साथ हुआ है, तो फिर और भी ज़्यादा दुख होता है। खैर, उसकी कमी तो मैं इस कार्यक्रम में पूरी किए ही दे रही हूँ। तो अब हम लाहौल की तरफ चलें। लाहौल स्पीति के ठंडे इलाकों में स्थानीय भेड़ों की ऊन से हथकरघा और सिलाइयों की मदद से रंग बिरंगे मोजे और दस्ताने बुने जाते हैं, जो कि कड़कड़ाती हुई ठंड में हमें बेहद गर्मी का एहसास देते हैं। और अब हथकरघा जो कारीगर हैं उनकी ये जो आर्थिक तंगी है उसको ख़त्म करने के लिए अब ऑनलाइन भी उन्हें किया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें सिखाया जा रहा है किस तरह से वो अपने ऑनलाइन काम को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं और देश विदेश तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं।
1: जान से चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे।

अनजाना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अपने पसंदीदा चैनल 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

और श्रोताओं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आशाएं बड़ी हैं हमारे मन में, लेकिन आपको पता है ना, हमारे आसपास इतनी आशाएं फैली हुई हैं जो कि आपका जीवन सुलभ हो जाए, मतलब आपको जो सुविधाएं मिल जाएं, उसके लिए दिन रात प्रयासरत रहती हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन आशाओं की व्यवस्था नहीं की होती तो फिर कुछ अलग ही कहानी होती। कल मैंने जो ऑडिटोरियम देखा, भरा हुआ था पूरा ऑडिटोरियम, अपनी गुलाबी छटा वहाँ पर ऐसे बिखेर रहा था जैसे मानो हजारों गुलाब एक ही जगह पर एकत्रित हो गए हों। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो कार्यक्रम, आशा वर्कर्स का जो कार्यक्रम था, वहाँ पर रखा गया था और सारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की आशा वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थी। उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम किया गया। हालांकि उस कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ था जिसका जिक्र मैं यहाँ तो नहीं करना चाहूँगी, खैर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन साथ ही में ये बता दूँ आपको कि हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, और उन्होंने सभी आशा वर्कर्स को गौरव, आशा गौरव का सम्मान जो है वो गले में पहनाया, यानी कि उनको मेडल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इतनी सारी आशा वर्कर्स हजारों की संख्या में और एक एक को अपने हाथों से वो मेडल पहनाना बहुत ही गौरव का क्षण उनके लिए भी था और आशा वर्कर्स के लिए भी। और उस कार्यक्रम का समापन भी बड़ी गर्मजोशी से हुआ, कुछ अजीबोगरीब गेम्स खेलते हुए, जिसमें कि मैं भी वहीं पर मौजूद थी और मैंने उसे देखा भी, अपने कैमरे में कैप्चर भी किया है, जल्द ही आप तक पहुंचा भी दूंगी।

तो श्रोताओं, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हथकरघा बुनकरों की बात की थी ना, अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन काम वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि बिचौलिए जो हैं वो सीधे बीच में से हट जाएंगे और कीमत पर आप लोग जो मोल भाव करते हैं वो भी ना करें। और आपको ये भी बता दूं कि वो जो साड़ियाँ बनती हैं ना, उनकी कीमतें कई बार लाख लाख रुपए तक भी जाती हैं, लेकिन उन लोगों का कितनी मेहनत और कितने दिन लग जाते हैं उसमें, वो भी तो सोचिए। और आप लोग भी आगे बढ़ करके सोशल मीडिया का उपयोग करके सीधे सीधे उनसे कोई भी ख़रीदारी कर सकते हैं, किसी गाँव या स्थानीय बुनकर से कोई खूबसूरत शॉल या कुर्ता खरीद सकते हैं, उसकी फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया था उसी कार्यक्रम में। साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी का भी यही कहना था, शादी ब्याह त्योहारों और सरकारी निजी कार्यक्रमों में मोमेंटो या फिर प्लास्टिक के सामान देने के बजाय हाथ से बुने हुए मफलर, शॉल, कुशन कवर या फिर हैंडक्राफ्ट उपहार में देने की आदत डालें।

और श्रोताओं, ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इस बार आस्था और राष्ट्रभक्ति का एक अद्भुत अलौकिक संगम हुआ है। एक तरफ तो प्रकृति ने सावन की हरी हरी चादर ओढ़ी है और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में सराबोर है। वैसे होता तो हमेशा ही यही है, परंतु ये वो पावन महीना है जहाँ हर कंठ से हर हर महादेव की गूंज भी निकलती है और हर दिल में वंदे मातरम का अटूट जज्बा होता है। तो शंभू

कोई भी चीज़ हो, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, चाहे वो बच्चों का एजिटेशन हो या फिर कुछ भी, मैं कहती हूँ कुछ भी हो जाए, हमारा जो देश है वो सबसे पहले रहना चाहिए। मैं अटल हूँ इस फिल्म का गीत अभी आपके रेडियो सेट्स पर।

सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।

0: कैसे जी
1: अशोकराम भी यही कहना चाहते हैं कि आपका जो देश है वो सर्व पर परी होना चाहिए आप लोगों के लिए भी। आप लोग सोचें कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, भाई जो कार्य आप कर रहे हैं उसे ही ईमानदारी से कर लीजिएगा तो आपके देश के लिए वो ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सहयोग की ज़रूरत है तो सहयोग ज़रूर कीजिए। और एक बात अब चलते चलते मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसी महीने में अब बहुत सारे हमारे जो त्यौहार हैं वो शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता संग्राम का ये महापर्व आता है, त्यौहार की तरह ही इसमें जश्न मनाते हैं हम। और फिर रक्षाबंधन, सिंह संक्रांति और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए वैसे अस्त पड़ा हुआ है लोग कहते हैं, लेकिन 7-8 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक तिथि नक्षत्र विशेषकर रोहिणी मृगशिरा और चंद्रमा की स्थिति का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसे कि स्थानीय जो हमारे ज्योतिषी हैं उन्होंने विशेष परिस्थितियों में विवाह योग्य माना है। तो इन दिनों में विवाह हो रहे हैं तो उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक जिनके की विवाह रखे गए हैं इन तिथियों में, और आगे आने वाले समय में जिनके विवाह रखे गए हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारक है रेडियो गुंजन परिवार की ओर।

और अब ज्योति पठानिया को भी कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दे दीजिए। जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ले लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना,
5: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर।
4: सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम।
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। और बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
12: अरे बाप रे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए।
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देश

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
6: सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
7: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
8: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
7: तुझे पूरा यकीन है?
8: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
7: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
11: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
12: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
13: सही है यार।
12: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
13: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
12: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
14: अरे बाप रे।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी के सामने फिर से एक बार आ गया हूँ एक नई कहानी को लेकर, अंगदान से जुड़ी हुई और देहदान से जुड़ी हुई। दोस्तों, हमने कई बार सुना है अंगदान और देहदान बहुत अच्छा काम है, लेकिन इससे लोगों को फायदा होता क्या है? तो आज की कहानी जो है वो एक देहदान के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जो आज के हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपनी मदर की देह को मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिया था ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, अच्छे से रिसर्च कर पाए। तो आज की कहानी में हम उनसे बात करके यही जानेंगे कि कैसे इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया और किस तरह से पूरी चीजें हुई और इससे फायदा, इससे आउटकम क्या निकलता है, ये इतना फायदेमंद माना जाता है। आइए चलते हैं, हम आज के मेहमान का स्वागत करते हैं। आज के जो मेहमान है उनका नाम है बालाजी अय्यर, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी सिस्टर भी है जिनका नाम है रेवती अय्यर, वो भी दिल्ली में ही रहती है। तो दोनों भाई बहन आज यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने अपनी मदर जिनका नाम राजलक्ष्मी अय्यर जी था, 86 इयर्स की एज में, 85 इयर्स क्रॉस कर गई थी, 86 इयर की एज में उन्होंने उनका देहदान किया मेडिकल कॉलेज को। बालाजी सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रेवती जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में जी। सो सर, हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले ये बताइए कि देहदान के बारे में आपको प्रेरणा कैसे मिली और आपकी मदर का नेचर कैसे था, कैसा था, मतलब क्या करती थी वो, किस टाइप का उनका व्यवहार था?
3: सर, मेरी मदर है ना बहुत ही जेनरस नेचर की थी। उनको एक तो वो टीचर भी थी बाय प्रोफेशन, तो उनको सिखाना भी अच्छा लगता था और दूसरों को कुछ भराई हो अपने से, कुछ छोटी भी चीज, छोटी से छोटी चीज दे दें तो बोलती थी नहीं देना चाहिए, कर देना चाहिए हेल्प। दैट वाज हाउ शी वाज
2: हेल्पफुल थी बहुत जी। देहदान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
4: हाँ, मैं ये आंसर करता हूँ। ये सोशल मीडिया वगैरह में काफी, जैसे ऑर्गन इंडिया है उनके एडवर्टाइजमेंट है और दिल्ली में शायद एक देहदान ददीची
2: देहदान है,
4: तो ये सब कुछ सालों से पढ़ रहे थे और हमें ये भी पता चला कि हमारे देश में डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत लोग ऑर्गन डोनेशन से बेनिफिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह।
2: बिल्कुल।
4: तो मैंने खुद भी कुछ साल पहले अपना ऑर्गन इंडिया के साथ रजिस्टर किया था ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो जब अभी हमारी मदर गुजरी तो हमने सोचा उनके याद में कुछ ऐसा काम करें जो जिससे समाज को बेनिफिट हो, तो इसलिए हमने वी डिसाइडेड।
2: ये तो हुई आपकी प्रेरणा। क्या कभी ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपकी मदर ने कभी इस चीज पर डिस्कशन किया था या कभी कोई ऐसी इच्छा जाहिर की थी?
4: डायरेक्टली नहीं, बट उन्होंने कहा था कुछ मेरे गुजर जाने के बाद कुछ यूजफुल समाज के लिए तरीके
3: डोनेशन देना चाहिए,
4: डोनेशन देना चाहिए, ऐसा बोला था
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब किसी के परिवार में किसी की डेथ होती है तो बहुत सारे परिवारजनों से जब पूछा जाता है अंगदान या देहदान के बारे में तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया और हम कैसे कर सकते हैं और हमें कोई अधिकार नहीं है। तो मैं बस पब्लिक को, मतलब हमारे श्रोताओं को ये समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल कई बार जानकारी के अभाव में आपके जो परिजन होते हैं जो गुजर जाते हैं वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम इन चीजों पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन दान कोई बुरी चीज नहीं है और दान करने से किसी की फीलिंग्स को कोई ठेस नहीं पहुंच सकती, उल्टा एक स्ट्रेंथ ही मिलेगी आपको उस गम, उस दुख के समय में। तो जी सो बालाजी सर, आप हमें, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किस तरह से आपने ये चीज डिसाइड की, मतलब जब उनकी डेथ हुई तो क्या वो बीमार थी या फिर बिल्कुल नेचुरल एज के कारण जो डेथ हुई थी उनको?
4: बिल्कुल हेल्दी थी। तो जो भी डेथ हुआ नेचुरल कॉजेस के कारण ही हुआ
2: जी।
3: सर मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि वो पिछले खासकर 3-4 साल से शी वॉज अ रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर और एक्सरसाइज वॉकिंग सब करती थी और मेडिटेशन और ब्रीदिंग करती थी, तो उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहा टिल द लास्ट मिनट ओके, और वो बहुत अच्छी तरीके से गई
2: जी। रेवती जी एंड बालाजी आप दोनों हमें ये भी बताइए कि मतलब कई बार ऐसा होता है परिजन होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि इतने दुख के समय में हमें ये चीजें याद नहीं आती, तो जब ये आपके साथ हुआ तो इतने दुख के समय में आपको कैसे इन सब चीजों की प्रेरणा मिली, कैसे ये चीजें याद रही कि आपको उस दुख के समय में मतलब देह दान करने का याद रहा और आपने कांटेक्ट किया हमें ऑर्गन इंडिया को एंड देन फिर डोनेशन हुआ, उन लोगों को भी प्रेरणा मिले कि वो किस तरह से इस चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं?
3: एक्चुअली मेरे भाई बालाजी जो हैं उन्होंने आके ये बात मुझे जिक्र की व्हेन आवर मदर पैस्ड अवे और मैं एकदम चमक उठी, मैं आई बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन आई हर्ड दैट बिकॉज आई मीन ऑफकोर्स ट्रेडिशनली बॉडी को जला देते वो सब करते हैं वो तो है, बट आई फील दिस वुड बी द परफेक्ट गिफ्ट टू हर बींग अ टीचर एंड हर अ मदर्स बॉडी दैट इट इज बींग यूज्ड इवन आफ्टर डेथ।
2: बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो टीचर थी।
4: और ऐड करना चाहता हूँ उनका डेथ 4 सितंबर को हुआ और ये डोनेशन हुआ 5 सितंबर को जो हमारे जो टीचर्स डे है
2: जी बिल्कुल
4: उस दिन हुआ था, उस बात से हमें काफी मतलब आश्चर्य हुआ सुकून भी मिला।
2: ये तो बहुत ही अनोखी बात हुई कि एक टीचर जिनका प्रोफेशन टीचर था जिनका पैशन टीचर था वो अपनी मृत्यु के बाद भी बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, अभी भी वो पढ़ा रही हैं और उनका जो डोनेशन हुआ वो भी टीचर्स डे के दिन हुआ, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। बिल्कुल वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा, तो अगर आप कुछ चीज अच्छे से चाहो तो भगवान भी उस चीज को पूरा करने में लग जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रेवती जी एंड बालाजी हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ और जानकारी आपसे हासिल करेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
5: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी जिंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे हैं बालाजी सर से और रेवती जी से, जिन्होंने अपनी माँ का देह दान किया था। तो बालाजी सर, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि हमारे समाज में इन चीजों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि अगर हम देहदान या अंगदान जैसा काम करते हैं तो हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमें वो अंग मिलेंगे ही नहीं, या फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बीइंग अ तमिल कम्युनिटी, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग तो बहुत ज्यादा रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा अपने कल्चर से डीपली जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीजों को आपने कैसे टैकल किया, या फिर आपके मन में कभी कोई ऐसा डाउट आया हो, या उस डाउट को सॉल्व कैसे किया आपने?
2: हाँ जी, हाँ जी, देखिये हमारे कम्युनिटी में भी ऐसे काफी सारे बिलीव्स वगैरह हैं, रिचुअल्स वगैरह बहुत है, लेकिन हमको ये लगा, मेरे मदर को भी बहुत ज्यादा रिचुअल्स में विश्वास नहीं था। और रही बात ये इस बिलीफ की कि अगर हम अंग दान करते हैं तो हमें अगले जन्म में अंग नहीं मिलेगा, हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते। अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका भलाई मतलब होगा, अगर कुछ होना है तो। सिमिलरली देहदान हमने सोचा, देखिए एक तो एक महान कार्य है, आई मीन बच्चों को पढ़ने के लिए एक रिसोर्स मिल रहा है, तो हमें लगा कि इससे बढ़कर और महान काम क्या हो सकता है। आई मीन पूजा पाठ तो चलिए हम करते हैं, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है ना।
3: एक और बात है कि उनको वो हर्ष में बोलती थी मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। और हम ये जब देहदान की बात छिड़ी तो मतलब ऐसा लगा कि यही मोक्ष का तरीका है, कि जाने के बाद भी इतना अच्छा काम कर गई तो भगवान इससे ज्यादा और किस चीज से खुश होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये
3: वैसे तो राख होके खत्म हो जाता शरीर, अभी देखिए वो कितने स्टूडेंट्स कितने जनरेशन तक उसको पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, जो दूसरों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि वो अपने मतलब ड्यूरिंग होल लाइफ टाइम वो लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको ये मौका दे दिया जाए कि अपने जाने के बाद भी आप बहुत सारे लोगों की मदद करें और वो भी अनंत काल के लिए, तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है।
2: एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखिए आजकल ये हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण है, आई मीन वातावरण बदल रहा है, यू नो धरती को ठेस पहुंच रहा है, पेड़ कट रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि हम किसी शरीर को हम दहन करते हैं तो बहुत सारा लकड़ी का इस्तेमाल होता है, बहुत सारा प्रदूषण भी होता है। हमने सोचा एक इसलिए इको फ्रेंडली मेथड भी है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसलिए हमने हमें उस एंगल से भी फेवरेबल लगा
1: जी। सो बालाजी सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो इन चीजों में विश्वास रखते हैं, हम लोग तो दान के लिए बिल्कुल खुले हाथ से स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे कई बार रिश्तेदार होते हैं वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते और वो उस चीज पे वहां पर ऑब्जेक्ट करते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं फैमिलीज में। तो क्या आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा? मतलब आप और रेवती मैम तो तैयार थी, लेकिन हो सकता है कभी किसी रिलेटिव ने इसको अपोज किया हो या उन्होंने इस बात को नहीं समझा हो, तो उस चीज अगर हुआ हो तो उस चीज को आपने कैसे टैकल किया?
2: नहीं, ऐसा फॉर्चुनेटली हुआ नहीं था तो, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये इसके बारे में ना किसी को जीते जी सोच विचार कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जब कोई गुजर जाता है उस टाइम पे बाकी परिवार के लोग बड़े भावुक इमोशनल स्टेट में होते हैं
1: जी,
2: तो इसलिए उस टाइम दिमाग साफ साफ काम नहीं कर पाता है, तो कई तरह के डर भ्रम वगैरह में ये जो बिलीफ है वो सब आ जाते हैं, तो आप देर कर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो पहले सोच लेना अच्छा है।
3: और सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ऐसे डाउट हो कि अंगदान करना चाहिए या ऐसे मेडिकल स्टूडेंट को देना चाहिए, वो ना खुद जाके ऐसे स्टूडेंट से बात करे या किसी को जिसको अंगदान मिला है उनसे बात करे, ताकि उनको एक डिफरेंट एंगल मिलेगा इस सब्जेक्ट के बारे में और उनको समझ में आएगा उनको कितना, जिसको भी मिला है उसको कितना फायदा हुआ है इससे
1: जी। लेकिन रेती जी पूरी समस्या तो यही है कि लोगों के मन में जब इस तरह से इन टॉपिक्स पर जब डाउट्स आते हैं तो वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं और वो किसी बात ही नहीं करते, अपने डाउट क्लियर नहीं करते। ये डिस्कशन हमारी फैमिलीज में होता ही नहीं है कि हम दान करना चाहते हैं अपने शरीर को या अपने अंगों को, इन चीजों पर डिस्कशन होता ही नहीं है।
2: ऐसे होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके समाज में अवेयरनेस बढ़ना चाहिए।
3: जब चाय समोसे के साथ बात करते हैं ना घर में, बाकी चीजों के बारे में हंसते हैं खेलते हैं, तब ऐसी चीजों के बारे में भी थोड़ी बातचीत यंगर जनरेशन को छेड़ देना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम अप्रोच करें ताकि वो अपने फैमिली में जाके डिस्कशन को स्टार्ट करें। बिल्कुल जी,
3: एकदम चाय समोसे के साथ।
1: बिल्कुल चाय समोसे के साथ। ये इतना सीरियस टॉपिक रहता है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे स्टार्ट भी करते हैं तो माँ बाप उन्हें चुप करा देते हैं कि नहीं अभी ये सब बातें मत करो प्लीज।
3: नहीं तो उनको ना कुछ अच्छे अच्छे डिश बना देना चाहिए बच्चों को और उसके साथ बैठ के तब, ताकि मम्मी पापा खुश हो जाए फिर इस बात को छेड़े कि आपको क्या लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सजेशन हम जरूर देंगे।
2: जैसे संस्थाओं की तरफ से भी उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, पेरेंट्स अगर उनको अप्रोच करें उनके थ्रू
1: जी,
2: एंड क्योंकि बच्चों को तो पेरेंट्स तो मुंह बंद करा देते हैं ना
1: जी।
3: आजकल एक खुला माहौल बन रहा है, डिस्कस भी करते हैं पेरेंट्स, ऐसा नहीं है, पर उनको थोड़ा उसके लिए पुश करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, हम आपके सजेशन जरूर लेंगे चाय समोसे वाले और बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे कि अच्छी सी डिश बना के वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
2: फेस्टिवल वगैरह में भी अपना स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े।
1: बिल्कुल लगाते हैं सर, हम हॉस्पिटल में या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि आईसी मटेरियल इंस्टॉल किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाया जा सके। जी सर, हमारी श्रोताओं का आप ये भी बताइए कि आपको किस तरह का पेपर वर्क का सामना करना पड़ा जब आपने ये दान करने का निर्णय लिया, तो कितना समय लगा पूरी प्रक्रिया में?
2: हाँ, ये एक्चुअली जो टीम आया था, जो मेडिकल कॉलेज आपने जो रेफर किया था, उनके लोग आए थे डॉक्टर, वो पेपर्स लेके आए थे। परमिशन ऑफकोर्स फैमिली मेंबर से लेना पड़ता है शरीर कलेक्ट करने से पहले, तो एक 5-10 मिनट का काम था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो हाँ, 5-10 मिनट से ज्यादा अगर फैमिली मेंबर्स विलिंग हैं तो बस उतना ही काम रहता है। उसके बाद वो जो टीम आया होता है वो बॉडी कलेक्ट करता है तो और एम्बुलेंस में ले जाता है। तो मैं भी गया था उनके साथ, तो और वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया कहाँ बॉडी वगैरह कहाँ प्रिजर्व करेंगे वगैरह, उन्होंने दिखाया
1: जी, उन्होंने पूरी जानकारी आपको दी।
2: हाँ जी
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो रेती जी एंड बालाजी, हम यहाँ पर फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी
2: जी, जी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे रेवती जी से एंड बालाजी से जिन्होंने अपनी माता जी का देहदान किया था। तो सर एंड मैम, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताइए कि कई लोगों को डाउट्स होते हैं कि अगर हमने देहदान कर दिया तो फिर हम अंतिम संस्कार या अंतिम क्रियाएं कैसे करेंगे, तो आपने आपके केस में आपने कैसे इस चीज को परफॉर्म किया, कुछ ऐसी विधियां मौजूद है जो आपको बताई हो पंडितों ने?
2: मेरे को यही लगा, देखिए अगर आप थोड़ा उनका जो केश वगैरह या नाखून वगैरह काट के रख सकते हैं
1: जी,
2: उसका आप सिंबॉलिक क्रिमेशन कर सकते हैं करने के लिए।
1: ओके।
2: वैसे पंडित जी ने कहा आप देहदान कर रहे हैं तो इन चीजों का जरूरत भी नहीं है। हमने पता किया था
1: जी,
2: हमारे जो फैमिली पंडित जी थे उसके अलावा हमने और जो जानकार जो लोग हैं पंडित लोग हैं, कम से कम 4-5 लोगों से हमने पता किया
1: जी।
2: तो सभी ने एक ही बात बोला कि आपको ऐसा कोई रिचुअल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कुछ करना चाहिए तो मेरे को लगता है, तो पंडित जी ने ही बोला थोड़ा केश और थोड़ा नाखून वगैरह आप काट के रख सकते हैं
1: जी।
2: तो उसका आप एक सिंबॉलिक क्रिमेशन कर सकते हैं।
3: सर और एक और चीज है इसमें कि इट इज आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से दिस बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस कि मैं जो ध्यान करती हूँ हर रोज उसमें मुझे सिखाया गया है कि हम जब ध्यान सिर्फ एक 20 मिनट का प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस, वो जब करते हैं हमारे जो पूर्वज 7 generations
1: जी
3: तक उनको वो वाइब्रेशंस मिलता है और वो मुक्त होते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदू धर्म में तो कई ऐसी विधियां हैं
3: ताकि वो मेरे मदर फादर को वो मिले
1: जी। बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारी ऐसी विधियां मौजूद हैं जिसमें हम उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे पितृपक्ष हुए एंड ऑल, और आई एम श्योर कि दूसरे धर्मों में या दूसरे समुदायों में भी ऐसी कई विधियां मौजूद हैं। जरूरत है सिर्फ डिस्कस करने की, जिस तरह से आपने बताया कि आपने 3-4 ब्राह्मणों से पंडितों से कंसल्ट किया इस चीज के लिए और कन्फर्म किया, तो लोग बस बात करने वाला होना चाहिए। बाकी जानकारी देने के लिए तो आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बट लोग बात ही नहीं करते।
3: बहुत बढ़िया।
1: अब बॉडी डोनेट हो चुकी है एंड काफी टाइम भी हो चुका है इसको, लगभग 6-7 महीने इससे ऊपर हो चुके हैं, तो अब आपको कैसा फील होता है इन सब चीजों को लेकर?
2: हाँ जी, हमें तो अच्छा ही फील होता है कि हमें लग रहा है कि हमारे मदर बेबी स्टूडेंट्स को टीच कर रही हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि वो अभी भी जिंदा हैं। सो ये शायद अगर हम उनके शरीर का दान कर देते तो ये एहसास ना होता, तो कम से कम हमें ये सुकून है कि उनका शरीर अभी भी दुनिया में है या खुद भी वो एज ए टीचिंग रिसोर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है।
3: ऐसे लग रहा है कि उनको प्रमोशन मिल गया है और वो प्रोफेसर बन के किताब बन के चली गई है उनके प्रिय प्रिय स्टूडेंट्स के पास, और उनके थ्रू सरस्वती माँ का उनका आशीर्वाद मिल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सही है कि मतलब जब स्पेशली जब एनाटॉमी लैब में इनको डेड टीचर्स माना जाता है तो इनकी पूजा भी की जाती है उस टाइम पर जब लोग सीखते हैं उससे, तो और जब कोई बॉडी मेडिकल कॉलेज को दी जाती है तो मेडिकल कॉलेज उसका पूरा फूल मालाओं से स्वागत करता है।

0: हमारे मदर का भी स्वागत हुआ था
1: जी जी
2: सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट वीक मेरा सपना आया मेरे मदर के लिए, ओके, और उन्होंने वो पूरी पूरे फॉर्म में हेल्दी होके मेरे पास आई थी, दरवाजे के पास बैठी थी, अंदर नहीं आई, और वो मुझसे ग्रीन टी पीती थी पहले जाने से, मतलब बिफोर शी पैस्ड अवे, तो उन्होंने फिर से मुझसे ग्रीन टी मांगा सपने में और पी के गई
1: जी बिल्कुल, वो खुश लग रही थी आपको
2: एकदम
1: जी बिल्कुल, यही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और बहुत सारे लोग यही सब सोच के रह जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, क्या सही कर रहे हैं हम या गलत कर रहे हैं। तो उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही चीज है, आपके किसी एक्ट से अगर किसी दूसरे का भला हो रहा है, जहां पर इतने सारे लोगों का भला हो रहा है, तो वो काम गलत कैसे हो सकता है।
2: सर, और एक और बात है कि हमारा शरीर जो है उसका एक एक अंग है ना भगवान का, नॉट ओनली इट्स अ गिफ्ट, इट इज अ सोर्स ऑफ सच नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो हमारे समाज में जो लोग हैं जो इनको इन चीजों को बुरा मानते हैं, इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, या उनको हिचकिचाहट है किसी तरह की ऐसे काम करने में, उन सब के लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे अंगदान या देहदान के ऊपर?
0: मैं कहता हूँ ये बहुत महान कार्य है, तो अंगदान भी आप करेंगे तो बोलते हैं कि एक एक इंसान से कम 8 लोगों को बेनिफिट मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हाँ, तो और समाज में जैसे कि ऑर्गन्स का बहुत जरूरत है, यू नो, बहुत डिमांड है, लोगों को मिलता नहीं है, तो इसीलिए अगर हमारी तरफ से हम अंगदान कर रहे हैं या बाद में देहदान कर रहे हैं, बहुत महान चीज है जिससे समाज का भला हो रहा है, तो इसलिए हमें जरूर करना चाहिए आगे आके। इसे हमें आप पाप पुण्य के लैंग्वेज में भी अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलता है इसमें से।
2: और सर, जैसे आत्मा जितना पावरफुल है बोलते हैं ना,
1: जी,
2: वैसे ही हमारा शरीर भी इट इज अ वेरी पावरफुल थिंग जो हमें मृत्यु के बाद भी काम आ सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बोला कि 8 लोगों को बेनिफिट मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 8 लोगों को नहीं, 50 से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है। 8 लोगों की तो जिंदगी बच सकती है, और 50 से ज्यादा लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर बनाई जा सकती है थ्रू टिश्यू डोनेशन। और जब देहदान की बात आती है तो सोचिए कि अगर 3-4 साल भी बॉडी प्रिजर्व करके रखी जाती है, तो 4 साल में 100-150 स्टूडेंट्स का बैच आता है, तो आप 500-600 लोगों को आप एक टीचिंग एक्सपीरियंस दे रहे हो।
2: और वो डॉक्टर्स बनके पता नहीं कितने लोगों को ट्रीट करने वाले हैं।
1: वो डॉक्टर्स बनके होल लाइफ वो लोगों का इलाज करेंगे, एंड कहीं ना कहीं उन सब चीज का एक एक एक शेयर जो है वो आपकी मदर की आत्मा की शांति के लिए मिले जाएगा।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
2: उनको तो मुक्ति मिल ही गई, मैं तो अभी ऐसे ही समझती हूँ।
1: बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल मिल गई, इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता जी। तो चलिए बालाजी सर एंड रेवती जी, हम यहाँ पर अपना इस शो समाप्त करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मंच पर आए और लोगों के साथ इतनी अच्छी जानकारियाँ साझा की।
0: शुक्रिया डॉक्टर।
1: दोस्तों, मैं आपको भी यही विनती करना चाहूंगा कि देहदान या अंगदान एक गलत काम नहीं है, एक बहुत अच्छा काम है, और जब भी आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप इस चीज के लिए जरूर हाँ कहें, क्योंकि आपकी एक हाँ से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं ये शो समाप्त करता हूँ, हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ, एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चह ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा

में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है, आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर, वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या आर्टिजन मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर?
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना सर।
5: सर सर सर
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: ओके सर।
4: हेलो
5: चलाम
4: है, ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
11: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। और बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
10: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचि पाकिस्तान। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है, आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मस्त मास्क पहना रहे तूने।
3: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
2: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
3: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
2: एक और एक
3: है ना सर।
2: देना।
3: बहुत मस्त लगे आपको।
4: लेना सर।
2: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
3: समझ गया सर।
2: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
3: चल हम
2: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
5: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
6: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
5: तुझे पूरा यकीन है?
6: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
7: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
5: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
8: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
7: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
9: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
10: सही है यार।
9: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
10: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
9: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
11: अरे बाप रे।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशो तो हूँ तो हाँ सारिया दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी कन्ने तो हाँ सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से जरूर करा दे होने न कने कामकार भी करना जरूरी है कने तो हाँ सारे अपना अपना जेड़ा रेडियो सेट है सभी जरूर ऑन करी ले आना है या पहले ते ही ऑन करी कर जेड़ा से रखे होना है कने तो हाँ जो इंतजार जेड़ा है से रहिंदा है कि कालू दिया 2 बजे न कने कालू दिया तो हाँ सारे इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ते न तो जरूर जेड़ा इंतजार तुहां जो लग्या था से बिल्कुल खत्म होंदा है तुहां वास्ते कने कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से भी तुहां तक पहुँचाईंदे न नंबर तुहां तक पुजाऊंगा ताई तो तुहां ते इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टैक्स मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे तो नंबर है 7018117091 तो इस नंबर पर तुहां जेड़ा कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तो जरूर अहां शुरुआत जेड़ा इस कार्यक्रम दी करी थी है कने इसी कने तुहां सारे जो पता है कि कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक कने जेड़ा तुहांदियां फरमाइशां न सभी जरूर तुहां तक पहुँचांदे न कने जेड़ा गीत संगीत है सभी कार्यक्रम च चलिया रहिंदा तो तुहां भी समय अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़िया तां पहले कर देन अपने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत कन्ने फिर ही जेड़ा बाकी गल्लां न से तुहां तक लेकरी आउंदे न

0: कानवी दशमलव 2 MHz पर ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे शुरुआत। तो जरूर शुरुआत हाँ इस गीत कन्ने कीती है, कन्ने इसी गीत के बाद तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ सकते, कन्ने हाँ कन्ने गलबात चिड़े से जरूर करी सकते। कन्ने इसी कन्ने फेसबुक लाइव च भी तुहां जेड़ा है से अहां जो फेसबुक लाइव दिखी सकदे, कन्ने अपने जेड़ा विचार हैं से जरूर अहां तक पहुंचाई सकदे। तो श्रोताओं इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर मैं तुहां तक दसी तय कि 2 से 3 बजे तक रहिंदा है। कन्ने अजकने दिने दी गल करिए तां अजकना जेड़ा दिन है सोमवार का ये दिन है। कन्ने दिने दी शुरुआत जिहड़ा से अहां हमेशा कल भी अहां गलबात कीती है सकारात्मक सोच दी कि हमेशा अहां दिने दी शुरुआत जिहड़ा से सकारात्मक सोच कन्ने करते हैं। 10 अगस्त दी गल करिए 2026 दी तां अजकना जिहड़ा दिन तुहां जरूर इंजॉय करा दे होणे ने। कन्ने सावन का जिहड़ा सोमवार है ये भी तुहां जरूर श्रद्धा भाव ने इंजॉय करा दे होने। तो इसी कन्ने अहां दे पहले श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी ठीक ठाक, तू सुना?
0: जी अहां भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तुहां कुत्थे दे रहने वाले ने? कन्ने तुहां दा नाम की है जी?
1: रोटी खादी प्रोग्राम सुन ली अज मत दिन
0: अंदर
1: ही ना बाहर
0: कई बार होंदा ना कि अगर नेटवर्क इशू है ता ती दी वजह ने भी नी आवाज क्लियर होंदी ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। ता माया जी सुकड़े दा मौसम क्या बोला था इस टाइम?
1: ता मौसम माड़ी माड़ी धूप भी लगा दी है, बदल भी आई है, धूप लगी है थोड़ी थोड़ी।
0: जी जी। ता और नोईता जी?
1: और नोईता जी क्या था
0: जितने भी श्रोता ने तिना जरूर व्रत भी रखा होना ना जी।
1: व्रत व्रत हां रखे डियो हां दुआएं दा सारे जी जदे पर मंदिर टिकर जाए उंदे जरा के मत्था उत्था टेक के उंदे पानी पाए उंदे बस।
0: जी चलो अच्छी गल है जी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है क्योंकि सेहत है ता सब कुछ है ना जी।
1: हां जी
0: जी।
1: का जरा के सोच के सारा सारा जाए उंदे जे टिकर मंदिर टिकर दा।
0: जी जी
1: हां जी।
0: ता माया जी आज तो हां कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करके
1: गोरा प्यारी लाडली दा सुनाई दिया।
0: जी गोरा प्यारी लाडली।
1: हां जी
0: जी जरूर ए भजन तुहां तक पहुंचा देन जी। चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: हां जी तुहाड़ा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। बड़ियां अच्छियां होईयां तुहाड़ियां जानकारियां
0: जी। धन्यवाद जी तुहां इतना ज्यादा रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिंदे कने सारे कार्यक्रम सुनदे ना जी।
1: बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी थोड़ा बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता ता लगदी जरा ये सुन के दिल ये यंदा जरा सो
0: जी। चलो अच्छी गल है ना जी। जी धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी।
0: जी ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਸਭੀ ਕਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਨੇ ਇਸੀ ਕਨੇ ਇਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਵਨਾ ਜੀ, ਕਨੇ ਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਇਹ ਭਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ।

0: दर्शकों तुम सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत, प्यारा दिया भजन। फिर ते हाँ वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात उपर कने, तुम सारे भी गलबात करने भी जुड़ी होने न, क्योंकि कई बार होंदा ना कि यहाँ अपना जेड़ा काम में सभी करते रहते कने रेडियो जेड़े से भी ऑन रखा होंदा, क्योंकि रेडियो सुनने दे फायदे फायदे न। अहाँ अपने जेड़ा काम मन सभी कर सकते कने रेडियो भी जड़े से सुनी सकते, इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात, से कुथु ते बोला दे न कन्ने तिना दा ना के। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी। हेलो नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है ना? हेलो
1: हेलो,
0: हां जी ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना के है जी?
1: मेरा नाम
0: जी, क्या नाम है जी तुहांदा?
1: सिमरन।
0: सिमरन जी, ता क्या काम कार तुहां करा देन?
1: कुछ नहीं
0: जी। ता रेडियो सुना दे तक दे लगा था तुहां जो ये कार्यक्रम?
1: अच्छा
0: जी, अच्छा लगा था
1: जी।
0: जी ता और नोईता जी, हेलो
1: हेलो,
0: हां जी ता तुहां कुथु दे रहने आले न जी?
1: बागनी
0: जी। अच्छा, बागनी ते रहने वाले न?
1: बागनी सिद्धवा
0: जी, बागनी सिद्धबाड़ी ते रहने वाले न जी। ता तो हां क्या करते, पढ़ाई करते?
1: हां जो ना
0: जी
1: सॉन्ग सुनना
0: जी, सॉन्ग तो तुह जो जरूर सुनवाना है जी। तो हां पढ़ाई करते कि क्या करते?
1: पढ़ाई करते
0: जी। ता रेडियो तो हर रोज ही सुन दे कि आज ही सुनिया?
1: आज ही सुना
0: जी। ता तो ही लगाया था कि तो हमने दादा दादी या मम्मी सुना दे थे?
1: जी मम्मा
0: जी। अच्छा, मम्मी सुना दे थे जी। ता आज तो हाँ कुंदिया जिड़ा गीत ऐसे सुनने है जी?
1: लच्छी लच्छी
0: लच्छी लच्छी लोग गलांदे ना जी, लच्छी मेरा ना सजदा ना जी। जी जरूर है गीत तुह तक पहुंचांदे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: थैंक यू
0: जी, वेलकम जी। ये तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, दर्शो तो इस कार्यक्रम दे सफर जो फिरी ते अगे बढ़ांदे न कने तुहां जो लेकर चलदे न अगली फरमाइश दी ओर।

0: माया जी की फरमाइश चेगी तो हाँ तिना तक पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया कने फिर ते हाँ वापिस जड़े से अपनी गलबात लेकर तो हाँ तक पहुँची उन्हें कने तो हाँ सारे भी मेरी गलबात जड़ा सुनना जरूर बैठी होने न कने जड़ा अपनिया प्यारिया प्यारिया फरमाइशा न तिना जो भी इंजॉय करा दे उन्हें न दशो तो हमेशा हाँ गलबात करते न सेहत की क्योंकि सेहत जड़े सियाहां वास्ते सबसे पहले बाकी काम जड़ा न सियाहां वास्ते बाद विच हैं क्योंकि सेहत ठीक है ताई यहाँ अपने जड़ा बाकी काम मन चाहे से घरे दे काम मन चाहे से बारा दे काम मन चाहे यहाँ कोई भी काम करते न पहले यहाँ दी जड़ा सेहत है से सबसे पहले है तो अगले जड़ा श्रोता न तो जरूर हाँ तिना कन्ने गलबात करते न से कुथू दे रहने वाले न कन्ने तिना दा ना क्या हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: जी
0: जी तुहां कुथू दे रहने वाले न कन्ने तुहां दा ना क्या है जी
1: जी मेरा नाम है शिवम और मैं योल स्टेट गोदाम से रहने वाला है
0: जी योल दे रहने वाले न
1: ਹਾਂਜੀ ਸਲੇਟ ਗੋਦਾਮ ਤੇ
0: ਜੀ ਸਲੇਟ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤੱਕ ਦਿਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਾਈਡ
1: ਇਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਮ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੁੜੀ ਨਾ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ
0: ਜੀ
1: ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
0: ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਨੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਿਉਂਕਿ
1: ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ
0: ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹਾਂ ਘਰੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਾਸਟ ਫਰੂਟ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰ ਜਾਲੂ ਆਹਾਂ ਜੋ ਆਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਮ ਜੀ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁੰਡਿਆ ਗੀਤ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ
1: ਅੱਜ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਰੀਕ
0: ਜੀ ਕੁੰਡਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜੀ
1: ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਕ ਸਰੀਕ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
0: ਜੀ ਸਰੀਫ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ
1: ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
0: ਜੀ अगले जिहड़ा श्रोता न सभी जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हो न तिना ते भी जरूर अहां पूछी लैंदे न कि से कुथू ते बोला दे न कने तिना दा ना क्या है हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
2: नमस्ते मैडम जी
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
2: धन्यवाद मैडम जी असा ता ठीक ठाक मैडम जी तो सारी ठीक ठाक न मैडम जी पूरे स्टाफ आले
0: जी हां जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी
2: चलो ठीक ठाक ही रहना चाहिए मैडम जी सारे
0: जी ता तो हां अपना परिचय भी जरूर दे दिया जी
2: सुनील कुमार बोले मैडम जी कोठियां जलोट दी
0: जी सुनील जी क्या हाल चाल हैं कोठियां जलोट आले आंदे
2: बढ़िया न मैडम जी
0: ता तो हां भी जरूर अपनी जेड़ा विचार है न सेहत पर क्या विचार तो हां श्रोता तक पहुंचाना चाहेंगे कि
2: आजकल मैडम जी सेहत पर आजकल ना ज्यादा मतलब डर रहंदा मतलब जी आजकल पानी दा मतलब बाले पीया मैडम जी आजकल आजकल दस उल्टियां वगैरह मतलब ओदी आउंदियां ना मैडम जी, जी तो बाली के पानी के मतलब ठीक रहंदा मैडम जी
0: जी
2: बाकी और बाहर दा खाना बिल्कुल बंद करना चाहिए मैडम जी
0: जी जी
2: हाँ जी मैडम जी, बस और खाना खाना तो बिल्कुल घर ही का बनाया मैडम जी, ताज़ा।
0: जी ताजा खाना
2: हाँ जी ताज़ा खाओ मैडम जी।
0: जी, इसी
2: हाँ जी
0: कन्ने ज्यादा अपनी सेहत पर समय समय अनुसार जो टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए ना
2: हाँ
0: जी।
2: जी मैडम, कई बार ऐसा होता ना मैडम जी, छोटी इं बोलते इं
0: जी
2: बखार जी, बखार लगता सोचते
0: जी
2: ही नॉर्मली, फिर
0: जी
2: बाद लगता तो टाइफाइड हो गया मैडम जी।
0: जी जी
2: तो मैडम अजकल कोई भी बीमारी है मैडम, इं मत मतलब समझा
0: जी
2: मतलब इं
0: हल्के च नहीं लेना
2: हाँ जी, हल्के
0: चाहिए।
2: च मत लिया मैडम जी। हाँ
0: जी
2: जी
0: जी जी तो सुनील जी, आज तुहां कुंदिया जेड़ा गीत है से सुनना है अपनी पसंद च।
2: टाइम भी हो गया मैडम जी, बेशक दो ही बोल सुनाई नहीं, अभिषेक सोनी की आवाज च गाना है बंसरी दे बोल। हाँ
0: जी बंसरी दे बोल।
2: जी मैडम
0: जी
2: जी,
0: जरूर, ये गीत ये भजन तुहां तक पहुंचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
2: धन्यवाद मैडम जी, नमस्ते जी।
0: जी तशो तो चल दे ना, अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ान दे ना, कने तो हां सारे जो ही ले करी चल दे ना अगली फरमाइश दी ओर।

दर्शकों इस गीत की फरमाई शाह तक आई हुए सिद्धाड़ी बागनी ते कने तिना दा नाव है सिमरन जी तो जरूर तिना तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारिया भी जेड़ा इंजॉय जेड़ा से कीता कने फिरी ते अहाँ कार्यक्रम च हाजिर जेड़ा न से हुई न कने समय भी अपनी रफ्तार लेकर चले कने अहाँ भी जरूर समय के अनुसार चलना है गलबात अहाँ करा देन सेहत दी तो जरूर सेहत दा जेड़ा ख्याल है से अहाँ जो चाहे बरसात दा मौसम है चाहे कोई भी मौसम है अहाँ जो हर समय जेड़ा से अपना ख्याल रखने दी जरूरत है। इसी कने अगर अहाँ मौसम ऊपर नज़र दौड़ाइए तो मौसम भी थोड़ा देया अपनी रफ्तार पकड़ा दे तो मौसम दे अनुसार ही अहाँ अपना जेड़ा चाहे से घूमने का प्लान है चाहे कोई भी है चाहे अहाँ का कोई भी काम है तो ज़रूर मौसम दी और नज़र जेड़ा से तो हाँ ज़रूर दौड़ानी है। दो दिन वास्ते भारी बारिश का जेड़ा ओरेंज अलर्ट फिरी ते जारी है तो ज़रूर तो हाँ मौसम के अनुसार ही अपने जेड़ा काम मन से करने कने 11 अगस्त दी अहाँ गल करिए यानी कि कल्ले दी गल करिए भारी बारिश का जेड़ा ओरेंज अलर्ट जेड़े से जारी है तो इसी कने 15 अगस्त तक जेड़े से अनुमान जेड़े से जारी रहना है तो हाँ सारे ही अपना जेड़ा ख्याल है से ज़रूर रखने कने मौसम के अनुसार ही अपने जेड़ा काम मन से करने न इसी कने सेहत दी गल भी यहाँ करा दे न ता जेड़ा सेहत दा ख्याल है सभी रखने दी जरूरत है ज़्यादा क्योंकि कई बार होंदा ना कि यहाँ अपनी सेहत जो कुथी ना कुथी नज़रअंदाज करते न चाहे से छोटी मोटी बीमारी है यहाँ वह जो भी नज़रअंदाज करना शुरू हो जाते न यहाँ ये सोचते न कि ये तो बीमारी ही नहीं है। ठीक है सोचना थोड़ा देर ज़रूरी भी है कि यहाँ अगर सकारात्मक सोच देन तो हाँ अहाँ अच्छा फील कर देन पर कुथी ना कुथी चेकअप करवाना भी ज़रूरी होता अगर अहाँ चेकअप नहीं करवाते न कने हाँ छोटी छोटी जेड़ा लापरवाहियाँ तिना जो करते रहते न तो सह ही बीमारी जेड़े से बड़ा रूप धारण करी लेंदी है तो इसी कने अगर अहाँ समय दे अनुसार अगर चेकअप करवाई लेंदे न तो अहाँ की जेड़ा सेहत है सभी फिट रहती है कने बाकी जेड़ा फैमिली दे सदस्य न सभी जरूर खुश रहते न क्योंकि अज कने दौर की गल करिए तो कुथी ना कुथी सेहत जेड़े से अहाँ जो बार बार दस्तक देना शुरू करी दी है या अहाँ का जेड़ा खान पान है इस भी थोड़ा देया बदलाव है अहाँ ज़्यादा जेड़े से चटपटा खाना पसंद कर देना बरसात का मौसम है तड़ा जेड़ा भुने से खाना भी कुथी ना कुथी पसंद कर देना। ठीक है थोड़ा बहुत खाना भी ज़रूरी है पर उतना की ज़रूरी है जितना कि तुम्हें लगता है कि यहाँ की जेड़ा सेहत है से ठीक रही पाती है क्योंकि सेहत तो बड़ी करी कुछ भी नहीं है तो इसी कने अहाँ भी तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चल देना कने फरमाइश तुह तक पहुँचा देना तुह सारी भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो ज़रूर इंजॉय करा

આહુલા દીન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તોહા સારે ઇસ વક્ત કાર્યક્રમ સુના દીન આપની રેડિયો દો શશી કને ઇસી કને તોહા સારે સુન્યા એ પ્યારા દેયા ગીત પ્યારી દે ફરમાઈશ એ ફરમાઈશ આહ જો આયુ વે સ્લેટ ગોદામ તે કને તિનાંદા ના વે શિવમજી તો જરૂર શિવમજી તક અહાં એ ગીત પહોંચ્યા કને તોહા સાર્યા ભી એન્જોય કીતા તો જરૂર ये गीत बड़ा प्यारा था अगर तुहां ध्यान ने सुनिया होगा क्योंकि गीत संगीत जिहड़ा ने सियाहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं पर सियाहां पर निर्भर करता है कि अहां किस तरीके ने गीत संगीत सुनते हैं या तिना दा जिहड़ा मतलब है से समझते हैं तो जरूर गलबात अहां करा दे सेहत उपर सेहत जिहड़ा है से अहां वास्ते सबसे ज़्यादा जरूरी है सेहत का जिहड़ा ख्याल रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है चाहे बच्चे न चाहे युवा पीढ़ी है चाहे बुजुर्ग हैं चाहे कोई भी है हर किसी जो अपनी सेहत का जिहड़ा ख्याल रखने की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि बच्चों का ख्याल तो हाँ हमेशा रखते हैं अगर क्योंकि बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखना भी पौंदा है तिना जो कोई भी दुख तकलीफ होती है तो से बोली नहीं पाते न जेड़ा माता पिता न से जरूर खुद ही बच्चे का ख्याल रखते न कने उसका प्रॉपर तरीके ने ध्यान जेड़ा है से जरूर रखते न कने बरसात के मौसम च ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत जेड़ा है से जरूर होती है क्योंकि बच्चे होंगे थोड़े देर शरारती तो इन्हों का ख्याल रखना भी अहां का ही काम है अगर अहां ख्याल रख के ताई थोड़ा देर तिना दी जिहड़ा चेहरे दी स्माइल है सियाहां जो जरूर अपनी ओर जिहड़ा है से आकर्षित करती है तो इसी कन्ने अहां फिरी ते अपने कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से अगे बढ़ाना है क्योंकि फरमाइशां का जिहड़ा दौर है सभी पूरा करना है कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न ये फरमाइश अहां तक पहुँची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाते न तिना दा नाव है चरणदास जी कने से रहने वाले न खन्यारा ते तिना तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचा

कष्ट होता हूँ सुनील जी तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचाई कने सही फरमाइश के बाद अहाँ फ्री ते थोड़ा दे अगे बढ़ने कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है क्योंकि कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है तो जरूर अहाँ की जेड़ा कोशिश है यही रही है कि तुह दिया जेड़ा फरमाइशा से जरूर तुह तक अहाँ पहुँचान।

तो श्रोताओं तुह सारी अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति इसी गीत कने तुह सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर समय जेड़ा है से अहां जो बोला था कि तुम इस कार्यक्रम से अनुमति जेड़ा है से ले लिया।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
5: बेटा तुम याद रखना,
4: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
5: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
6: ये लो भैया पानी।
5: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
7: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
8: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
9: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
8: जल है तो कल है।
10: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर, वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर,
4: देना।
5: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर सर सर,
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम,
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
6: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
8: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
9: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
8: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
10: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
11: सही है यार।
10: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
4: बेटा तुम याद रखना,
3: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
4: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
5: ले लो भैया पानी।
4: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
6: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
7: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
8: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
7: जल है तो कल है।
9: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अब मस्त मास्क पहना रहे तूने।
5: थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना,
5: बहुत मस्त लगे आपको। लेना सर। सर सर सर,
4: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े

0: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा। मुझे अपने बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
1: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
2: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
3: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
1: आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
4: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
5: सही है यार।
4: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
5: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हाँ? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। और 1 लाख रुपए वो मैं रख लेता।
4: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?
6: अरे बाप रे।

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आमतौर पर अपना आज वीडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हो चुका कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल है श्रोतों तुंदे? उम्मीद करना तुंदे हाल चाल के नो ठीक बुने घरे बुने और अपने घरे तो सब के नो खुश बुने हिन तंदुरुस्त बुने हिन, है ना जी। ता कार्यक्रम मंच जिनके तो सब इन दे फेसबुक रे जितने भी इन दे दोस्त इन सोता जाने के उन्हें कि आज जैसे कि कार्यक्रम में कि ऐसा कौन शख्सियत मौजूद है और है बिल्कुल फेसबुक रे माध्यम तो भी बिल्कुल लाइव के ऐसा मौजूद है ने समय अपने फेसबुक पेज थो छोतों और रेडियो मंच तो बिल्कुल लाइव ही इन। ता 5 बजे तक रे कार्यक्रम

0: गया, सो चलना हाँ श्रोताओं और अनेकों जानकारी तुस हो गया है साझा करते हैं अपनी गदयाली बोली मंच और सोगे सोगे गीत संगीत रा पिटारा गया श्रोताओं सो भी खुलता रहता है। बहरहाल ताऊ थोड़ी करी इंट्रो गया सो जरूर देना चाहता हा अजस हो गए मौजूद हिन योल कैंटी का चैड रहे उप प्रधान जियाराना साजन हाशतो जी बिल्कुल हाल ही में के एन एस ओ उप प्रधान व पदमा के सो बैखे हिन श्रोतो और टीके जतेड और स्लेड गोदाम री जनता के योल री जनता के सो इन वाज तिलक के सो यारे मत्थे पर लगाओ हा। तो चलिए जी साजन जी तुम दा वेड़ी गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
1: धन्यवाद सचिन जी, सभी श्रोता धन्यवाद करता हूँ रेडियो गुंजन का सभी पहले धन्यवाद कि तो मुझे आज मौका दिता है जी। हाँ अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ चितैड़ पंचायत का उप प्रधान जनता विश्वास दिलाओ मुझे मुझे पर करूँ है आज उप प्रधान बनू तो मेरी क्वालिफिकेशन हाँ पोस्ट ग्रेजुएट है
0: जी
1: एच पी यू मेरे एम कॉम कर रूँ मैं प्लस बी एड है बाकी
0: जी। चलिए ठीक है जी, एजुकेशन के बारे में भी तो दसीता और बिल्कुल जनता विश्वास दिलाओ और जनता रे विश्वास में किया सो खरा उतरना पे साजन जी थो है जरूर जान ले लेकिन तो वैसे अपने शोधा शोधा के सो रोजाना ही है जरूर बनी सकते हैं जी रोजाना बनते थी 7018817098 पर नंबर आप मौके फिर आऊँ शेयर कर लूँ तू होगी साझा कर लूँ हाँ 7018817098 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो हो नहीं सकते हैं श्रोताओं और अपने क्षेत्र जानकारी अपने क्षेत्र जानकारी की सो वो के साझा कर सकते हैं। अगर तू वो लगता कि कुछ जानकारी की सो रेडियो मंच दसने लायक है रेडियो मंच साझा करने लायक हाँ तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ते हैं और मौसम रे जानकारी थोड़ी करी मौसम रे अपडेट के सो तुस होगी बयां करते हैं। इस समय हम गल करूँ श्रोताओं था धर्मशाला मंच किया सो गल करिए था धर्मशाला मंच इस समय किया सो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हाँ नमी की गल करूँ श्रोताओं जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बलते हैं आता ह्यूमिडिटी भी किया सो लगभग लगभग श्रोताओं 95% था जी बिल्कुल। ता साजन जी ने आज कने गेस्ट हिन श्रोतों अतिथि हिन और यारे बारे हैं और भी बहुत कुछ जान ले लेकिन साजन जी यही है सभी पहले तो इधर सगी तो है गीत कौन दिन होना चाहते हैं क्योंकि आज तो है इनके गेस्ट ने तुम दे फरमाइश हो पूरे करने हैं। चलिए ठीक है जी सोने ता भुंदे माहिया एक गीत है जरूर तू सभी भी हुन दे इंशा तो बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो भी गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम इस वक्त इंदी हापनिंग अपा के नो चल रही था अकमु के फिर बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा हार्दिक अभिनंदन है श्रोतों आइए तक कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगों किया सो लेकर चल रहे श्रोतों और जो इंदे आज के गेस्ट हैं साजन जी और गलबात के सो करते हैं ता श्रोतों तो सब भी वजाना ही कॉल कर सकते हैं 7081 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अक मौके फिर हूँ रिपीट कर लूँ 7081 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं श्रोतों अगर तू वो लगता कि हाँ जानकारी साझा करने लायक आता चलिए चलते हैं साजन जी ले और साजन जी ये दसा कि तुसो उप प्रधान बनने रे कि असो रुचि कड़ी थो आए और क्या तुसो पता थो कि तुंदा बैकग्राउंड भी थो मतलब राजनीति थो जुड़वा या फिर कहीं करे रुचि आए
1: नहीं सचिन जी मेरे घर मेरा बैकग्राउंड मेरे घर हूँ कोई भी राजनीति में ना हुई थी पहले
0: जी
1: प्रधान होने जड़ी रुचि हो लोका प्रति समाज सेवा समाज सेवा बाबू दिला में जकी बंदे सेवा करनी है तो कुछ करना है अक जड़ा स्टेप दे ए हो के ऊपर दाना थ्रू आवे मोड़ो मन जो ता कोशिश करूं ना आगे की भाई इत मन खतर खरा उतरू सब बिना जल मन
0: जी चलिए कोशिश बिल्कुल कामयाब बहुत होंदे और फिलहाल इन दे श्रोता गणा सो के कनेक्ट हो चुके हैं श्रोता पुस दिन कुन बलुंदन और कड़ी थों बल्लू कर दे हिन नमस्कार जी
2: बिल्कुल पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की
3: राम राम
0: हाँ जी नमस्ते जी
3: ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन
3: सर मैं राकेश बोल रहा फतेहपुर तो
0: अच्छा जी राकेश जी
3: हरे राम हरे कृष्णा और सर ठीक ठाक
0: बढ़िया जी बढ़िया तो है भला तो ठीक ठाक ना
3: हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया
0: अच्छा जी राकेश जी क्या हाल चाल फतेहपुर वाले रहे
3: ठीक ठाक सर
0: ठीक ठाक
3: बारिश ने जोर पकड़िया
0: अच्छा
3: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा तो राकेश जी कौन सा गीत सुनना पसंद कर ले तो है
3: सर टोला बसों का ड्राइवर होए मैं कल्ली है कि नहीं रहना
0: अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले तो सुए गीत है ना जी
3: ओके सर ओके
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप कैंसो चल रही था चलिए चल दिन हगो और साजन जी क्या क्या विजन लेकर किया सो तो है मैदान में खरे उतरे की टीका चतर व्यस्त है क्या कुछ तो है करना चाहते क्योंकि नो डाउट पहली बार पंचायत की सो बने और इतने साल थो टीका चतर सलेड़ गोदाम रहे जितने भी स्थाई निवासी ने बहुत सारी तकलीफ थो किया सो जो जो करते बुने है ना तो क्या विजन है तुंदा अपकमिंग किस प्रकार होगी अगले पाँच साल के सो टीका चतर जो तो है इर्दन
1: सचिन जी फर्स्ट टाइम इंदी पंचायत बनी है
0: जी
1: ता लोग का बड़ी ज्यादा उम्मीद है ना हर एक बंदा सोचता कि इंदा या काम बोआ तो विजन बिल्कुल क्लियर है
0: जी
1: कुछ है आपके मतलब शिक्षा शिक्षा सुधार है इंदे ओड़ी स्कूल नहीं ना
0: अच्छा।
1: स्कूल आवट प्राइमरी है तो तीन बच्चे स्कूल दूर आगना बंदा है ना मिडल तक ले गए अच्छा
0: जी।
1: बाद और इन कूड़े समस्या हर घर कूड़े समस्या आजकल
0: जी।
1: है ना पूरे नाले रहा तो तड़ी गंद गंद पूरे सारी जगह तो कूड़े समस्या भी सभी पहले तेरे बारे सोचूं है कुछ करने बारे सोचू क्या करते भाई करना ही है ना
0: जी।
1: तो बाकी रे पानी पे जल्दी समस्या तेती बार कर करी बाकी जड़े भी बुजुर्ग ने जिन्हें मुझे लगता कि भाई मेरा ये काम ना हुआ तो हूँ तुंदे माध्यम से कहना चाहता कि भाई हूँ 24 आवर्स तीन वास्ते अवेलेबल है जितने मर्जी सो मुझे फोन करें हम घर इच का तैयारी करना करने हो तैयार बस
0: क्या बात है एक अच्छे प्रतिनिधि रे कि बहुत बड़ी श्रोतों पहचान बंदे है कि हम घरे की जिगरे की सो काम करने तैयार है और एक अच्छा प्रतिनिधि की सो इतनी बल दिन जो अपनी जनता सो की सो जुड़ी करी रही है जनता सो की सो लगाव लगाई करी रखा और डाउन टू अर्थ हुआ सब भी मोटी गल है ना जी तो साजन जी होगी और भी बहुत गलबात की सो कर ले हिंया विजन दस हो कि जो कुछ एक समस्या है हिन तीनिया समस्या पर खरा उतरना है यानी कि जो पानी री समस्या कूड़े री समस्या है ना अकमन जो लगता कि योल टू सलेट गोदाम की अब हाल ही में बस भी लेकर गए थे, लेकिन सो बस के सो मोटे थे, आई थिंक तड़ी 42 सीटर बस के सो पास पूछे सकते हैं आके बड़ी मोटे साजन जी समस्या है ना कि इंदे जो सलेट गोदाम रे निवासी हिंद तिया वास्ते तकलीफ है या टिकट थेट रहे जो सियाने बुजुर्ग ने तिया वास्ते भी तकलीफ है ना कि मतलब तिया तड़ियों की सो गड्डी करी कर स्पेशल गाने पैदा तक बस बोआ था सो बिल्कुल बाखूबी की सो इंसान घट रेट मगे सो पूछ सकता है ना। तो इस तरीके की चर्चाएं क्या सो चलती रहनी हिंद श्रोताओं, तो सब बन रहे इस समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन रिगूंज सोगी। और ये श्रोताओं लेकर चलते तू सब भी जो अब कार्यक्रम में थोड़ी करी और हगूँ और फरमाइश वाला दौर के सोसू जरूर पूरा करना है श्रोताओं, तो ये सब श्रोता फरमाइश कर सकते हैं 7018107090 पर नंबर आख मुके फिर शेयर करना हाँ 7018107091 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गलारा विशेष ध्यान रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर भुआ जानकारी किया सो दसने लायक जरूर भुआ शो तो चलिए चलते ना। और हुन दिन तू सभी जो है प्यारा दे गीत तुंदे अपने वीडियो सेट में वीडियो गुंजन धर्मशाला में गंदे गंदे अगर जानकारी दू होगी बिल्कुल वो साझा करना चाहनो शो तो रुपये की सो लगातार की सो 9वें दिन 1.6% मजबूत भुआ अब डॉलर के मुकाबले 95.15 पर आए श्रोतों। ये पूरी गल ये पूरी जानकारी तू तो क्या है जरूर दस ले आइए फिलहाल लेकर चलते तू सभी जो इस गीतारी किनारे जुड़े रहा बने रहा आज सचिन कपूर सो गीत गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।
4: हार्मोन बनाती जिसका नाम होता है कोर्टिसोल जी जी, तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता तो शरीर भारी हो जाता है चेहरा लाल होता है।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर और कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा गैन से चल रही है। बहुत बहुत स्वागत आज मौके फिर सभी होने वाले रहा हार्दिक अभिनंदन। हाँ तो आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करिए और आगू बढ़न दहीन और तो सब बोल रहे समय वेड़ी गुंजन रिगून सोगी और हूँ सचिन कपूर तुसु सोगी और बिल्कुल आजिंद है मौके दसना चंदा सभी जो नौ श्रोता सोगे जुड़े हुए आज आज असु सोगे किया सो योल टीका चतैर रहे के उपप्रधान हैं उपप्रधान पद पर नियुक्त हुए इन श्रोतों और हाल ही में ही नियुक्त हुए हाल ही में ही के ने सो चुनी करेगी है सो योल भी जनता की है सो इन वास्ते लेते लुआ बहाल इंदे श्रोता

0: हेलो
1: जी।
0: अच्छा स्लेयर गोदाम थो।
1: हाँ जी हाँ जी। किशन
0: किशन जी, और किशन जी ठीक ठाक? राजीव बाजी बढ़िया
1: हाँ जी राजीव भाई, क्या अपना?
0: जी बढ़िया। क्या बात है, स्लेयर गोदाम थो तो है बल्लू कर देना। और तुंदे उपप्रधान क्या ने सभी खुरे ने आज लाइव कार्यक्रम मंच
1: जी।
0: तो बिल्कुल क्या गल बात करना चाहते और क्या कुछ तो है इच्छा रख देन की तुम स्लेट गोदाम की असो क्या कुछ भोआ, क्या डेवलपमेंट भोआ, क्या कुछ तुम्हें नजर अंदर काम न सो जरूर तो है अपने ऊपर दाना जो दस सकते हैं।
1: सचिन जी मेरा काम से आज इंदा रास्ता खराब हुआ तो प्रधान मल्लू वाला जरा थोड़ा ये पसीना इंदा ना लिनोना बना था इंदा पंचायत इन्होंने बने प्रधान जी जरा नोना बने ना
0: जी।
1: हाँ वे घर की तरह मैं तुम बताऊँ कर लेगा ठीक है ना। मतलब इंदा आज का रास्ता खराब है
0: जी
1: का इंदा जब मेन काम से तो खुला रहा तो कम तक चार पाँच बजे दुकान बिजली आ ना इंदा घर को रहा भैया पानी पड़ना तो ठीक है ना।
2: नमस्कार किशन जी।
1: नमस्कार जी।
2: प्रधान बनूं दा साजन ना
1: जी जी जी
2: तमे तुम दिगाल होने ली भाई रस्ते खराब है तुम दा चलो ये ध्यान ना पूरा है ना ये कि भाई रस्ता खराब है तो ये तो प्रायोरिटी पर कर ले तुम दे काम ना।
1: हाँ जी बड़ा बड़ा खराब है साजन जी अपना जाने कोई रिश्ते दाद दे जाए इंडिया का तो बंद जा रहे थे ऐसा है दुनिया में जो बंद जा ताकि इंडिया का सेट काम करते थे फुट फुट जाकर थोड़ी ना तो रिश्ते ना खराब है तो ना वो लोग मनु मनु बंद जाए तो रिश्ते में बुरा हाल है।
2: चलो
1: तो मैं ये देख लेंगे ना रिश्ता एक साथ गुजर दुनिया में हाल बदल करें ना।
2: चलो ये तो पहले तो असल कोई ऑप्शन थू ना बट आवे आके मंच तक जरूर कर ले तुंदी जड़ी हाँ मुश्किल तती हाल है
1: बिल्कुल। इतना साल है ना बोलू ना
2: हाँ जी
1: आ कदा ग्रा रे गा जो बलन का फिर मुंह पर में चार जन करता है लेकिन कुल अपन बना का तीन लोग चुराने दी करे पर ऐसा सही रही मुझे तो पाइप का पूरा खुला रही पाइप रे ना बात में बहुत मुश्किल पाइप का पूरा खड़ा पाइप ना पकड़ अरे लाइन का बात में हम कुछ हो गया ना।
2: चलो किशन जी मेरे पूरे ध्यान पर रहने तुम दी गल जड़ी भी तुम दी समस्या है ना ये जल्दी से जल्दी निवारण करने की कोशिश कर लो ना जितनी जल्दी हो। चलो ठीक है जी धन्यवाद मैं तुम्हारी पूरी गल सुन ली तो हमें जल्दी जल्दी निवारण कर लिया ठीक है ना।
1: ठीक है जी धन्यवाद।
2: ठीक है
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और बिल्कुल टिकट चतैड योल अपना स्लेट गोदाम रहे जितने भी स्थाई निवासी सो जरूर अपने आज आज ये मंच मुड़ो असू हो जरूर तो है कॉल करी करी गया सो दस सकते हैं कि क्या क्या समस्या की है जी कि किशन चंद जी जुड़े थी असू कि स्लेट गोदाम तो शो तो इन दसो कि यहाँ रे की सो कुल्ला रही समस्या है और रोड़ा रे की सो समस्या है ना। तो साजन जी बोलूँ दे कि बहुत जल्द की असो ऐसा समस्या व समाधान की असो है जरूर कर ले और प्रयासरत की असो जरूर रह ले। चलिए साजन जी ता युवा वास्ते और क्या कुछ प्लान तो है वकुर अपने दिमाग में कि किस प्रकार रहे युवा जो तो है कि असो व्यस्त कर सकते हैं।
2: एक्चुअली मैं सचिन जी तुंदे माध्यम से कहना चाहूंगा जाऊँ जिंदा युवा जड़ा आज नशे तरफ ज्यादा अग्रसर हो चुंदे ना जड़ा नशे ज्यादा अपना उंदा तथा तिवास दे मेन स्पोर्ट्स इन दे जड़ा स्पोर्ट्स है इन जड़ा ना ग्राउंड प्ले ग्राउंड ना पार्क ना कुछ है ज्यादा बच्चा मोबाइल या नशे तरफ ज्यादा ध्यान देंदा।
0: ये बिल्कुल सही गल बोले
2: तेरे बारे सोचूं तो कुछ तेरे बारे करना प्रयास की भाई जल्दी जल्दी प्ले ग्राउंड बना पूरी पंचायत चतैड़ मंच कोई ते शिक्षा दे सुधार वास्ते लाइब्रेरी सोचू था ताकि बच्चा बिजी रहा अक लाइब्रेरी खुली अच्छा मतलब पूरे चताड़ पर अक ताकि मज बच्चा जड़ा पढ़ने वाला बच्चा सोथड़ी खिंच के कर सकता इन्हें इन्हें सोचू दे ते प्रयास हा कि ये चीजें करनी ना इन्हें पंज साल अंदर अंदर सचिन जी
0: करनी
2: ये विजन है जी।
0: चलिए जी तो जो विजन साजन जी तो है अब एज अ प्रतिनिधि जिन्हें वोट ना पूरा तू सो तैयार भी तो है प्रतिनिधि और अगर तो है इस विजन जो लेकर की सो चल रहे हैं तो ये वाकई में काफी कमाल विजन है और मुझे लगता है कि ओल्टी का जितने स्लेट गोदाम रहे जितने भी इंदे स्थायी निवासी हैं तीन वास्ते बहुत ही बेहतर की सो पूछेगा ना क्योंकि आजादी तो बाद पहली बार की सो पंचायत बने है ना इन दी ओल्टी का जितने पहली बार पंचायत बने और ये सब फैसिलिटी अगर मुड़ीगन दिन तो वाकई में करखन अगर खाना शक है सो घट पुछ सकता जड़ी सुखे ने शरी और की सो युवा आजकल दौड़ो करता है युवरा माइंड की सो करखन अगर खा दिमाग के सो पढ़ाई री किनारी चलेगा ना है ना लाइब्रेरी जैसा अगर एटमोसफेयर अगर है तो दी पल्ले ता नेचुरल दी गल है कि युवा तस किनारी की सो खिंचना और अगर प्लेग्राउंड री गल करिए तो प्लेग्राउंड भी वैसे पूरे उतिया दस प्रकार रहा इन्हें अक थेड़ू थूसो भी आवे कि ऐसा चलिगो बेचारा है ना तेरे भी बड़ा गम मासूक तो दस प्रकार रहा मतलब अक प्लेग्राउंड बनेगा छदड़ी टूर्नामेंट भून है ना यूथ की ऐसा टूर्नामेंट माँ बिजी बुझेगा छा रोजाना प्रैक्टिस माँ कोई ना कोई की ऐसा दड़ी खेल ला तो काफ़ी अच्छा विजन है तुम और इस विजन जो लेकर तो चल रहा और अगले पाँच साल तक अगर इत सब चीज़ें तो है करी लेंदेन पून तो असु सभी वास्ते बड़े गर्व रही गल तो शोधन तो सब बन रहे हैं आरजे सचिन कपूर सोगी रेडी गुंजन धर्मशाला हुणू कर देन बनी रहा जुड़ी रहा असु सोगी लेकिन चलते हैं शोधन तो सभी जो है फरमाइशारी कनारी

0: ready to.
1: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इस समय इंदी अपने का पगन सो चल रही बहुत बहुत स्वागत आकमो के फिर सभी होने आ रहा हार्दिक अभिनंदन हाँ श्रोतो आइए कार्यक्रम जो थोड़े करी हगो बढ़न दे हिन और कुछ एक जानकारी होगी कि सो तुसो रूबरू करवन दे हिन श्रोतो बाइक और कार में घूमने वाली महिला जो कि असो बढ़ावा मिलना हाँ श्रोतो जी बिल्कुल श्रोतो एक गल भी पूरी दस लतुस होगी लेकिन फिलहाल हिमाचल बढ़ना महिला व पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन श्रोतो देखिए बढ़ना हाँ पूरी जानकारी दस दें तू होगी सौंदर्य बर्फ तो ढकुरे पहाड़ और रोमांचक पर्यटन स्थल रे वास्ते की असो मशहूर हिमाचल प्रदेश अब है महिला पर्यटक रे वास्ते की असो देश सब तो सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन राज्य बढ़ने भी दिशा में के असो बड़ा कदम चुकना

हेलो हर्षोत्तम, प्रदेश पर्यटन विभाग है कि ऐसो शी टूरिज्म डिपार्टमेंट पॉलिसी तैयार की ऐसो करी है हर्षोत्तम। और जतिमा ए बल्लू हा कि पॉलिसी अंदर ए बल्लू हा कि महिला जो सुरक्षित सहज और सुविधाजनक पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराने पर विशेष जोर के आसो दीना हा। प्रदेश सरकार रहे मनना शतों की पिछले कुछ वर्षों के पिछले कुछ सालतों की ऐसो देश भर में महिला वे बिच के ऐसो सोलो ट्रैक्स है ना इस तरीके की गेम सो भुचू कर दी। एडवेंचर टूरिज्म जो तेज करने वास्ते महिला पर्यटक री पहली पसंद किया सो बढ़ने वास्ते की यह नीति अहम साबित भुची सकती है। जी बिल्कुल शुद्धों तब हिरदन ये नीति अहम साबित बुंदे या कि ना बुंदे ये तब वक्त ही दसला। फिलहाल कार्यक्रम मंज थोड़ा करी और हगु है बढ़ दें इन शुद्धों और तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी। तो शुद्धों सूरज री रोशनी थो मुलना वे पानी ये पूरी जानकारी दू हो गया है ज़रूर शेयर कर ले। बरहाल तो सब बंडरन आर जी सचिन कपूर सोगी इंदी अपनी गप्पर आनंद ले करते हैं इन शोतों अपने अपने रेडियो सेट मंच वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच लेके चल देन। और हुनंदन तू सभी प्यारे प्यारे श्रोता जो ये प्यारे दिया गीत

0: শত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসা বি টিউন কর রো আর কার্যক্রম এস সময় কি আস হইন্দি আপনি গপ্পা বিলকুল লাইভ চল রই ইনতে রেডিও সেট মা আই শত কার্যক্রম জো থোড়া গরি আর হাগু বড়ন্দে হিন আর কুছ এক জানকারি রি আর কে সো নজর জরুর দড়াই লন্দে হিন শত আর এতো বাদ ফে সাজন জো ইনদে প্রধান হিন তিনলে জরুর চল লে শত जिले मुख्यालय धर्मशाला में सोगी लगते पर्यटक स्थल मैकलोडगंज रे अपर धर्मकोट मा किया अपर धर्मकोट मा किया सो चर्च री बड़ी खेप पुलिस से किया सो बरामद करी है शोतों पुलिस थाना मैकलोडगंज री टीम में किया सो नशे के खिलाफ कार्रवाई करते अक युवक थो 114.95 ग्राम चर्च किया सो बरामद करे हा मामले में पुलिस से किया सो राजस्थान निवासी गिरधारी लाल जो हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू करे ते अशो तो मैकलोडगंज वे टपरी कैफे थों हगु अक सुनसान स्थान पर जांच रे दौरान के सो गिरधारी लाल लेके शतों सो एक खेप मुड़े हा शतो हाँ जी और राजस्थान वे निवासी हिन और तू दसना चाहता है श्रोता हूँ कि पुलिस है कि ऐसो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर देती है और दुई किनारे पुलिस विभाग कांगड़ा वे अधीक्षक एएसपी कुलभूषण वर्मा के ऐसो खबर री पुष्टि करे है श्रोता तीनियाँ दसो कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वे तहत कार्य की ऐसो बुचू करता है पर्यटक स्थल मंच विशेष निगरानी की ऐसो अह रखू करते हैं संबंधित पुलिस थाना जो भी मैकलोडगंज भागसुनाग नड्डी व धर्मकोट विशेष जांच पड़ताल अभियान के असो शुरू करने वे निर्देश के असो जारी करे हैं शोतों जत्थों पर्यटक स्थल में किसी भी प्रकार री अवैध संदिग्ध गतिविधि पर के असो रोक लो रहे हैं शोतों है ना जी ता इसी सो के शोतों 82.86 ग्राम चिट्टा सो गया कि युवक भी गिरफ्तार हुआ और ये नूरपुर पुलिस से कर हुआ तो आए दिन क्या ना सो शोतों इस प्रकार किया सो सुक्का नशा किया सो बड़ू कर दा हा है ना तो ये साजन जी थों भी पूछ लेंदे साजन जी जी की तो है रो कर देन अब जो खबर भी तो है होने कि आए दिन क्या ना सो चिट्टा के सो बड़ा बड़े फैलो कर दे टीवी रोकथाम वास्ते तो है अपने पंचायत में क्या कुछ जागरूक कार्यक्रम कराने भी सोचू कर दे हिन या किस प्रकार हो गए थे
1: सचिन जी आए इन वाले टाइम में मुझे सोचूं दे कि कोई ऐसे चिट्टे खिलाफ मतलब आ कमेटी गठित करें पंचायत स्तर में जड़े निगरानी करन कि कौन बंदा कि बाहर छूंदा कस हबे चिट्टा अगर ऐसी कोई सूचना दिला तीन वास्ते भी असो कुछ अपनी तरफों पंचायत की तरफों इनाम वगैरह रखना जड़ी तेरी सूचना दिला तेरी रोकथाम वास्ते जड़े भी कठोर कठोर जड़े इन कदम सो उठाने ने बाकी यही बोली सकता हूँ होता
0: जी जी जी बिल्कुल जी कि चिट्टा की ऐसो वाकई में ज्यादा बड़ू करता और यूथ में बड़ा इतियो लेकर के ऐसो क्रेज हो चुका करता सो नो डाउट कि इस्तेमाल भी करू कर दें लेकिन इस्तेमाल अथो ज़्यादा बेचने मान जी किया सो ज़्यादा यूथ के सो रुचि दसू कर दें लेकिन जो तुंदे प्रयास इन जो तुंदा विजन आ जो तू ये दसू कि हाँ असो कि असो यूथ वास्ते लाइब्रेरी के असो अग बनाने हैं ताकि यूथ तड़ी के असो व्यस्त रहा प्ले ग्राउंड के सो बनाने ने कि तड़ी यूथ के असो व्यस्त रहा बुजुर्ग वास्ते क्या कुछ साजन जी सोच रहे तो है कि क्या विजन लेकर चल रहे कि बुजुर्ग वास्ते क्या कुछ बोलना चाहिए टहलने टूलने वास्ते
1: बुजुर्ग इंदे बुजुर्ग वास्ते सचिन जी मेरी तरफ हुए या कि तीन वास्ते पार्क हुआ ओपन जिम हुआ तड़ी सो मतलब अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया है ना तो बाकी जो भी इन सरकार की तरफ होती है कोई से अगर इंदी स्कीम तो तीन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी अगर मुझे लगता कि बुजुर्ग तक पूछना चाहिए तो सो करना अपनी तरफ हूँ ना
0: जी
1: हाँ जी
0: ओह चलिए इंदे श्रोता सो गए बिल्कुल जुड़ रही थी ये श्रोतों लेकिन है ध्यान थोड़ा इस किनारी तो उनका तो श्रोतों तो है कॉल कर सकते हैं 708-709 पर चलिए लेके चल दे तू सब भी जो इस प्यारे दे गीता री किनारी और फिर तत्थों बाद है श्रोतों साजन जी होगी और गलबात जरूर कर ले है बने रे आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता आंसू के इस समय बन रहे हैं और आंसू जो होनो करते हैं तेरे सब बेरे अशो तो अन्य जानकारी भी असु तुसोगे शेयर करते रहना हाँ बने रे जुड़े रे असोगे वेड़ी गुंजन री इसी गूंज सोगे शो तो सब हिंदी अपनी गप्पा जो हूँ करते हैं और गंदे गंदे अब साजन जी हो गया एक दो सवाल के सो और करने इनको जो कि समय भी किया शो तो सो बूने आला था एक दो सवाल के सो जरूर कर ले लेकिन तीन तक तो है इंजॉय कर इस प्यारे दे गीता जो

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा तो है सब हम कर देने अपने अपने रेडियो सेट में वेरी गुंजन धर्मशाला में जे चलिए श्रोतो वक्त भी चलो तो सब भी था इजाजत लेने रहा लेकिन फिलहाल इन दया के श्रोता के सोस होगी कनेक्ट हिंद पुस दिन कुंड बल्लू दिन नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: जी
0: कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
1: मेरा नाम इसी को मैं फ्लैट गोदाम से बोल रहा
0: हूं अच्छा फ्लैट गोदाम से तो शिवम जी आज तुम देव प्रधान के ना सो बिल्कुल मौजूद हैं रेडियो मंच
1: हां जी हां जी
0: तो शिवम जी क्या कुछ समस्या लेकर ही तो है हाजिर हुएन प्रधान उप प्रधान लागू रखने वास्ते
1: नहीं नहीं समस्या नहीं पर आज साधन भाई आए थे रेडियो से तो मैं सोचा बड़ी खुशी हुई वैसे आज
0: जी
1: और भाइयों हां पहले भी मुबारक देती थी आज फिर ही मुबारक दे देना बुजुर्ग मैं सुनी ना गल की बुजुर्ग सोचा पार्क ओपन जिम वगैरह बाकी बड़ी खुशी मतलब रेडियो पर लाइव सुनी गई
0: समय बुझेगो हा अब तुस थो इजाजत लेने रहा लेकिन समय थो पहले असु जो प्रधान टीका चतैड रहा पंचायत टीका चतैड रहा तिया थो पूछी लेंदेन तिया विजन क्लियर करी था अपना कि मेरा विजन की है सो इन वाले 5 साल अंदर रहने वाला हा प्रधान जी माफ करो प्रधान जी गंदे गंदे क्या कुछ किया सो बोलना चाहते क्या शब्द अपने क्या ना सो रखना चाहते
2: सचिन जी तुंदे रेडियो दे माध्यम मनु तो अपील करना चाहता कि जस भी मेरी जरूरत है मेरा मोबाइल नंबर है 7379787625957 जड़ा भी होंगे इस टाइम में सो मेरा नंबर नोट कर लिया 7362859579 अगर एनी टाइम 24 आवर्स आऊं जड़ा अवेलेबल है मतलब कसी भी कमाए रिगार्डिंग जखने मेरी जरूरत पर लिया हूँ तो इस टाइम में इला तो आऊं तुंदे माध्यम ते अपने सारे प्रधान नरा जड़े बार मेंबर ने जनता सब भी जड़ा धन्यवाद करता जी ये इतना भरोसा रखो हुआ तो खास कर अपने बार मेंबर ते प्रधान नरा जड़े बड़ी कोऑपरेटिव टीम आ गया हमारे चितैड़ में सारी एक टीम आ बड़े अच्छे से काम करूँ सारे मिली जुली करी

0: सो भी जरूर रहने उम्मीद है होप सो कि जो साजन जी आज जी इस मंच तो वादा करें सो तथि पर प्रयासरत कहने सो जरूर रहन है ना और कार्य कर ले तो प्रयासरत भी जरूर रहना। हालांकि जो ये गल्ला बल्ली सो धरातल पर लेना कि सो इतनी आसान नहीं बहुत मेहनत आ बहुत लगन वहने वाले बहुत मेहनत के सो लगने वाले हैं लेकिन फिर भी एक विजन के सो अपनी और थों क्लियर करो। चलिए साजन जी तुम तो भी बहुत बहुत धन्यवाद करो।
1: धन्यवाद सचिन जी।
0: जी धन्यवाद और श्रोतों तुम तो भी धन्यवाद है इस कार्यक्रम जो इतना प्यार और मान सम्मान देने वास्ते मूलधन दत्ते श्रोतों बनी रहा जुड़ी रहा रेडी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रही माँ बाप री सेवा हमेशा करा प्रकृति का ख्याल किया सो जरूर रखा श्रोतों।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। 11 और 12 अगस्त को धर्मशाला के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बंद। पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक

बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नशे से दूर रहे युवा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा लगाने का करें प्रयास। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन चौकी नेरवा का किया वर्चुअल लोकार्पण। सुबह सुबह जन समस्याओं के समाधान को मैदान में उतरे केवल सिंह पठानिया। दिल्ली रवाना होने से पहले सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना कुशलक्षेम। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल के भरमाड़ गांव में स्थित सिब्बोधान धाम प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था स्थलों में से एक है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये प्राचीन धाम वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वाला हर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य अनुभूति का अनुभव करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सिब्बोधान धाम एक प्राचीन सिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि इस पावन स्थल पर ऋषि मुनियों और साधु संतों ने कठोर तपस्या की थी, जिससे ये स्थान विशेष आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से जुड़े इस धाम में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। इस धाम की सबसे प्रसिद्ध लोक मान्यता सर्पदंश से जुड़ी है। वर्षों से आसपास के क्षेत्रों के लोग सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों को यहां लेकर आते रहे हैं और मंदिर की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना कर आते हैं। ये मान्यता स्थानीय लोक आस्था का विषय है। साथ ही सर्पदंश की स्थिति में आधुनिक चिकित्सा उपचार लेना अत्यंत आवश्यक है। सिब्बोधान धाम का शांत वातावरण, घने वृक्षों की हरियाली और धार्मिक महत्व इसे आध्यात्मिक पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया सोमवार यानी कि सुबह सुबह जन समस्याओं और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरे। सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने सारनू पहुंचकर श्री रविदास मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इसके पश्चात करीब 7:45 बजे विधायक अचानक सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचे। विशेष बात ये रही कि उन्हें सुबह 8:50 में गग्गल से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी। इसके बावजूद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात करना और उनका कुशलक्षेम जानना प्राथमिकता समझा। विधायक ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विद्युत उपमंडल नंबर 2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के चलते 11 अगस्त को मनेड़, चैतड़ू व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में तथा 12 अगस्त को दाड़ी बाजार, गबली दाड़ी व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओपीएस में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की है और सरकार अपने इस फैसले पर पूरी तरह से कायम है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और विकास कार्यों का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। उनका कहना है कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए पूरे प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में धर्मशाला, नगरोटा, जसूर, देहरा, पालमपुर और पठानकोट में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि जयसिंहपुर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। धर्मशाला, देहरा और नगरोटा को इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। मेरा युवा भारत माय भारत हिमाचल प्रदेश द्वारा युवा स्वयं सेवकों के लिए आयोजित 6 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का कांगड़ा में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, स्वयं सेवा एवं राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ते हुए उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने युवा स्वयं सेवकों के साथ विशेष संवाद किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय को सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं, ताकि उनकी क्षमता का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में हो सके। उन्होंने युवाओं को नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति विशेष रूप से जागरूक करते हुए कहा कि नशा मुक्त युवा ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकते हैं।
युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने आसपास के युवाओं को भी नशे के विरुद्ध जागरूक करने और नशा मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। युवाओं को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश देते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा एवं नए अवसरों के साथ अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और कृषि से जुड़े गौरव को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वर्चुअल माध्यम द्वारा जिला शिमला के नेरवा में नवस्थापित अग्निशमन चौकी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अग्निशमन चौकी केवल आग लगने की घटनाओं से निपटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारी बारिश, भूस्खलन और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि अग्निशमन चौकी से नेरवा क्षेत्र के लगभग 55,000 लोगों को लाभ मिलेगा और यहां पर 2 गाड़ियां जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। उनका कहना है कि आग लगने की घटना के क्षेत्र के पारंपरिक लकड़ी के मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बहुमूल्य सेब बगीचों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त

कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग, माफ़ कीजिएगा, गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं बिल्कुल हाजिर हो गई हूँ। और गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी अक्सर श्रोताओं आपसे मुलाकात होती है, इसलिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है हमारे श्रोताओं का साथ रहेगा और अपने श्रोताओं के साथ हमारा साथ रहेगा। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में बातचीत का भी आनंद उठाएंगे, साथ ही साथ आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले बताते हैं धर्मशाला का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और वातावरण में नमी इस वक्त पूरी की पूरी 100%। जी हाँ, 100% नमी है। और मौसम की बात करें तो धर्मशाला में इस वक्त थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो रही है। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। शाम जो है वो होने को है और कार्यक्रम का आगाज़ मैंने प्यार किया फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ आज का ये कार्यक्रम आप इंजॉय करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आपसे। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम के बारे में ही मैं आज आपसे बातचीत करूँगी। बरसात का मौसम श्रोताओं जहाँ अपने साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर के आता है, वहीं थोड़ा बहुत बरसात के मौसम में गड़बड़ी भी होती है। और क्या गड़बड़ी होती है, किस तरह से हम उस गड़बड़ी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसी के बारे में कार्यक्रम में हम बात करेंगे। और बरसात जहाँ हम गर्मियों से पूरी तरह से, वैसे तो हिमाचल में इतनी, खासकर धर्मशाला में इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत जो है वो बरसात का मौसम हमें दिलाता है। और श्रोताओं, बरसात का नाम आते ही हर किसी के जहन में आ जाता है, बरसात हो रही है तो चलो चाय पी जाए, और चाय के साथ पकोड़े जो हैं वो बहुत खासकर पहाड़ी इलाकों में, या यूं कहें कि मैदानी इलाकों में भी चाय के साथ पकोड़ों का अपना अलग ही अंदाज़ होता है। और इस समय शाम का समय है, चाय का भी समय है, बरसात भी हो रही है, और मैं जो ये बातें आपके साथ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी इमेजिनेशन में भी पकोड़ों की प्लेट और गर्मा गर्म चाय की प्याली जो है वो दिख रही है। और जो टी लवर्स हैं उनके लिए तो चाय की बात करना ही, मतलब उनके लिए वरदान सा होता है, और मैं भी टी लवर हूँ। और कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन दिन में अगर आप 2 से 3 कप चाय पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए इतनी भी बुरी नहीं होती है। और ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से जो है वो मोहब्बत, प्यार होना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी तरह चाय से इश्क है तो क्या बात है, क्योंकि कोई अगर आपके साथ हो ना हो, आपके आपके जहन में चाय का ख्याल आते ही जो है वो खुशी सी आती है। और इसके लिए बहुत भारी भरकम रकम नहीं खर्च करनी होती श्रोताओं, हमें बस उठ करके किचन तक जाना होता है, पैन रखना होता है और गर्मा गर्म कड़क सी चाय की प्याली बना करके पीनी होती है। और यकीन मानिए, जब आपके साथ कोई भी नहीं होता और सिर्फ एक चाय का कप होता है तो वो पल भी बहुत हसीन और यादगार हो जाता है आपकी ज़िंदगी का। तो चलिए, आपके साथ चाय और पकोड़ों की बातें मैंने बहुत कर ली, और मेरे साथ बता दें श्रोताओं आपको इस वक्त सचिन कपूर जी मेरे साथ इस वक्त सहयोग कर रहे हैं। टेक्निकल अगर कुछ होता है तो हमारे साथ एक जो है को होस्ट कहें हम, या इंजीनियरिंग का कोई स्टाफ होता है तो उनका भी काम थोड़ा बहुत चल रहा है, और शायद आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो तो बताना चाहूँगी कि वो जो हल्की फुल्की आवाज़ है वो सचिन कपूर जी के लैपटॉप कहें या कंसोल से आ रही है। और अगर ज़ोर से आ रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आपको पहले भी बताया था हमने कि हमारा अभी 2 दिन पहले ही जो है कंसोल और सारा सिस्टम सेट हुआ है, तो इसको पूरी तरह से सेट होने में अभी थोड़ा सा वक्त और लग सकता है श्रोताओं। चलिए, बातें बहुत हो गई और अब चलते हैं गीत संगीत की ओर। श्रोताओं, सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोता उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे गुलाम फिल्म का गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपके साथ विचार जो है वो साझा करते हैं, और आइए सुनते हैं क्या कहता है आज का विचार। तो हर बड़ा बदलाव रोज उठाए गए छोटे कदमों से शुरू होता है। जी हाँ, हर बड़ा बदलाव रोज उठाए गए छोटे कदमों से शुरू होता है। हम सभी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की जिस भी सिचुएशन में होते हैं उससे ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ चाहने से बदलाव नहीं होता श्रोताओं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। और रोज़ छोटे छोटे जो कदम उठाए गए होते हैं वो हमें एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुंचाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो रोज़ छोटे छोटे कदम जो हैं वो लेते रहें। श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला मेरे यानी अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोता, रेडियो गुंजन का परिवार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रेडियो गुंजन का परिवार यानी हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, और आप सभी जानते हैं कि 91.2 मेगाहर्ट्ज जब भी आप सुनना चाहते हैं गूगल में सर्च करके आप कहीं पे भी हैं सुन सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो गार्डन में आप रेडियो गुंजन सुन सकते हैं, और रेडियो गुंजन की ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो गुंजन के कार्यक्रम जो है वो सुन सकते हैं। और श्रोताओं, आप लोगों का साथ और प्यार ही है जिसकी वजह से हम जो है वो अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आते हैं, और कार्यक्रम लेकर के आते ही नहीं हैं बल्कि आज के इस डिजिटल युग में हम दिखाते भी हैं। जी हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर आप हमारे केंद्र के कार्यक्रमों को सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं। श्रोताओं, इस वक्त आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं इस समय आप मेरे साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में फिर से वक्त हो रहा है श्रोताओं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो आइए एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओं, गुड इवनिंग धर्मशाला। और बता दें आपको कि इस वक्त मेरे साथ टेक्निकल स्टाफ हैं सचिन कपूर। जी हाँ, सचिन कपूर, जिन्हें हर रोज़ आप शाम को सुनते हैं 4 से 5 बजे। और कार्यक्रम इन दी अपनी गप्पा जने उबल दिया तो हर भाषा का एक अलग ही अंदाज़ होता है, और चाहे वो भाषा है चाहे वो बोली है श्रोताओं, हिंदी का अपना अलग ही अंदाज़ है। हिंदी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जो हमारी स्थानीय भाषाएं होती हैं, चाहे वो गद्याली है, चाहे वो कांगड़ी है, चाहे वो चंबियाली है, या हमारे आसपास की जितनी भी भाषाएं या बोलियां हैं, हमारे यहाँ पे धर्मशाला में गुरखाली भी बहुत हैं, और उनकी जो गुरखाली है वो भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी बहुत कोशिश मैं भी करती हूँ, गुरखाली समझ तो पूरी जाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं 90 से 95% बोल लेती हूँ, लेकिन जब कभी बोलने की कोशिश करो तो इतना तो नहीं बोल पाते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत जो नेपाली है वो हम बोल लेते हैं, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग समुदाय से हैं श्रोताओं। लेकिन वो कहते हैं ना कि भारत के लोग रंग वेशभूषा सब कुछ अलग अलग है, उसके बावजूद भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, और हम सब एक दूसरे की भाषा और बोलियों को भी समझते हैं, क्योंकि हम एक स्थान में रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, आना जाना होता है, और बड़ा अच्छा लगता है। खासकर धर्मशाला की ही अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला में चाहे हम गद्याली हैं, हमें नेपाली आती है, बोलने भी आती है, समझ भी आती है, वहीं कुछ एक नेपाली दोस्त भाई बंधु हैं मेरे जो कि बड़ी अच्छी गद्याली बोलते हैं, और कांगड़ी तो मुझे लगता है बाकी बोलियों में से थोड़ी सी आसान है, और कांगड़ी का भी अपना अलग ही मज़ा है। तो चलिए, मैं बातें करते करते भाषाओं के इस और बोलियों के इस बातचीत में घुस गई, और अपनापन सा लगता है श्रोताओं जब भाषाओं और बोलियों की बात होती है, और यही अपनापन आपको देता है रेडियो गुंजन, और तभी तो समय समय पर हम आपके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो है वो लाते रहते हैं। खैर, बात हो रही थी इंदी अपनी गप्पा कार्यक्रम की। सचिन कपूर इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, टेक्निकल स्टाफ मेरे साथ टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में श्रोताओं, आज जिस बारे में मैं बात करूँगी वो है बरसात के दिनों में होने वाली जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, उसको हम किस तरह से होने से बचा सकते हैं, यानी कि खासकर घर की जो महिलाएं हैं उनके ही ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से हम अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। तो वही छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और सबसे पहली बात यही है कि आजकल बरसात के दिनों में पानी जो है वो बड़ा दूषित आता है, मटमैला सा आता है, तो उस पानी को अच्छे से फिल्टर करके, छान करके आप पिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़िल्टर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए यही है कि सूती कपड़े से आप उस पानी को अच्छे से 2-3 बार छानिए, अच्छे से उसे गर्म कीजिए, उबालिए, उसके बाद ठंडा करके उस पानी को पीजिए, ताकि डायरिया वगैरह होने का जो खतरा है वो ना हो। और श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे। और कार्यक्रम में अब आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। बात हो रही है श्रोताओं बरसात के मौसम की, और बरसात के ऊपर ही एक प्यारा सा गीत मैं चुन करके आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत अच्छा लगेगा। गुरु फिल्म का ये गीत है, और इन्जॉय कीजिए प्यारा सा गीत रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, श्रोताओं यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोता इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला और ये कार्यक्रम लाइव इस समय आप सुन रहे हैं और समय समय पर इस कार्यक्रम को आप लाइव देखते भी हैं हमारे रेडियो गुंजन के फेसबुक पेज पर। प्यारे प्यारे श्रोता हैं हमारे जो कि हमारी हर वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, उन सब का भी दिल से शुक्रिया, दिल से आभार। श्रोताओं, बरसात के मौसम की बात आज कार्यक्रम में मैं कर रही हूँ कि बरसात का मौसम जो है नमी के कारण बैक्टीरिया और मच्छर इस मौसम में बड़ी तेजी से फैलते हैं। इस दौरान कई सारी बीमारियां जैसे कि डायरिया, मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार और टाइफाइड जैसी बीमारियां होना आम बात हो जाती है। और श्रोताओं, इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए हमेशा उबला और साफ पानी पिएं, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और बाहर का खुला खान पान, फास्ट फूड की ओर हम बहुत अग्रसर होते हैं तो फास्ट फूड खाने से भी थोड़ा परहेज करें इन दिनों में। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत और भी करेंगे, जानकारियां भी साझा करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। एक जरूरी सूचना, विद्युत उपमंडल नंबर 2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव के कार्य के चलते 11 अगस्त यानी कल प्रातः मनेड़, चैतड़ू और अन्य साथ लगते क्षेत्रों में तथा 12 अगस्त को दाड़ी बाजार, गबली दाड़ी और अन्य साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का कार्य पूर्ण होने तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। जी हां श्रोताओं, कल और परसों 10 और 11 तारीख को, माफ कीजिएगा, 11 और 12 अगस्त को, 11 अगस्त को मनेड़, चैतड़ू और उसके साथ लगते क्षेत्र और 12 अगस्त को दाड़ी बाजार, गबली दाड़ और अन्य क्षेत्रों में सुबह 9 से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। और इनकेस अगर बारिश रहती है तो ये काम अगले दिन जो है वो किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि बिजली, पानी हमारी आधारभूत जो ज़रूरतें हैं उनमें से हैं, और अगर पानी ना आए तब भी जीवन रुक जाता है, और अगर लाइट ना हो तब भी हमारा जीवन जो है रुक सा जाता है। हर चीज़ बिजली से चलती है, चाहे वो किचन के उपकरण है या हमें कपड़े धोने हैं या हमें और भी कुछ करना है, मोबाइल ही चलाने हैं। आजकल सुबह से शाम तक जो खाली समय होता है उसमें हम मोबाइल ही चलाते हैं, और अगर फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो वो भी नहीं चलेगा। इसलिए विद्युत विभाग पहले से ही ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की अपील करता है कि आप ये सारे काम जो जो हो सकते हैं बिजली से होने वाले वो एक दिन पहले निपटा लें, यानी कि अपने फ़ोन अच्छे से चार्ज कर लें अगले दिन अगर पूरे दिन लाइट नहीं रहेगी तो। और श्रोताओं, कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से, कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं इस वक्त आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय मेरे साथ। और अब कार्यक्रम में श्रोताओं चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम में बहुत ही प्यारा सा गीत। शाम का समय है श्रोताओं, और आजकल चांद तो नहीं दिखता है, लेकिन जब चांद दिखता है तो वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। चांद की ही खूबसूरती को दर्शाता और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये गीत, इसके धुन और इसकी जो फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, उसकी भी अलग ही कहानी थी, बहुत ही प्यारी सी। खैर, कहानी तो अभी नहीं सुना सकते श्रोताओं, लेकिन गीत ज़रूर सुनवाएंगे आपको। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा ट्रैक।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में मैं बात कर रही हूँ आपसे बरसात के मौसम में होने वाली जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं वो कब बड़ा रूप ले लें और हमें परेशान करें, इसलिए उन छोटी छोटी बीमारियों का समय रहते ही हमने उपचार करना है और घर में ही देखभाल करनी है ताकि ये बीमारियां लगे ही नहीं। पानी की बात हमने की, हम सभी जानते भी हैं कि बरसात के दिनों में पानी हमें उबाल कर पीना है। बाहर कई बार हम बाहर जाते हैं और बाहर हमें चाट वगैरह दिखती है, खासकर फ्रूट हेल्दी होते हैं, हेल्दी माने जाते हैं, लेकिन अगर कट करके आपको कहीं चाट वाट मिल रही है या खुला खाना कहीं पे है तो उसे भी अवॉइड करें। वैसे तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए बाहर का खाना, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है दोस्तों कि हम घर से निकले होते हैं और काफ़ी समय हो गया होता है और हमें भूख लग रही होती है, उस समय हमें मार्केट में जो भी दिखता है फटाफट वो हम खा लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी किसी जगह आप जा रहे हो जहाँ ज़्यादा समय लग सकता है तो अपने बैग में, पर्स में थोड़ा बहुत घर से ही खाने का सामान ले जाएं, और अगर नहीं ले जा सकते तो बाहर का कटा हुआ फ्रूट या फिर खुला खाना जो ढका भी नहीं होता उसको खाने से परहेज करें। श्रोताओं और श्रोताओं बात हो रही है खाने की, तो खाना जो है वो फ्रेश और गर्म ही खाएं। घर का खाना जितना अधिक आप खा सकते, अधिक से मेरा मतलब है ओवर ईटिंग नहीं, कोशिश करें कि घर का ही बना हुआ खाना जो है खाएं। अधिक से मेरा मतलब है कि बाहर का ना खाएं और जब भी आपको भूख लगे तो घर का ही खाएं। ओवर ईटिंग तो बिल्कुल भी ना करें, इससे हमारा जो पेट है वो भी गड़बड़ाता है और हमारा जो वेट है वो भी गड़बड़ाता है। इसलिए हमारा पेट भी तंदुरुस्त रहे और हमारा वेट भी आइडल रहे, उसके लिए समय समय पर घर का बना हुआ फ्रेश और ताज़ा खाना खाएं। श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं आप इस समय मेरे साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। चलिए श्रोताओं गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक।

0: श्रोतो, कार्यक्रम में अब समय है समाचारों का।
1: अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की

दसवीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

1491.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। समाचारों के बाद और अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। अब चलते हैं गीत की ओर। सुनवा रहे हैं आपको श्रोताओं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। एक और जानकारी साझा कर रहे हैं श्रोताओ आपके साथ। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 6 राजकीय स्कूलों को राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। स्कूलों में मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोग, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर बुशहर, रोहडू विधानसभा क्षेत्र में राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय रोहडू, शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौपाल, सिरमौर जिले के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नोहरा धार तथा ऊना जिले के ऊना विधानसभा क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहडाला शामिल है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल योजना शुरू की है। इन स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट कक्षाओं, खेल मैदानों, इंडोर स्टेडियम, पौष्टिक भोजन और स्विमिंग पूल सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस पहल से प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों के स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होंगे। श्रोताओ, ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, अब कार्यक्रम में हम फिर से चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए उनके बारे में। घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें। कूलर गमलों और टायरों वगैरह में जो है पानी आप उसका बदलते रहें। और वैसे तो धर्मशाला की अगर हम बात करें या धर्मशाला के आसपास के इलाकों में इस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती कि हम कूलर इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी बरसात का पानी कहीं ना कहीं हमने अपनी छतों पे टूटे फूटे गमले रखे होते हैं या फिर कोई ना कोई डब्बे टिन कनस्तर रखे होते हैं जिसमें पानी जमा होता रहता है, और उस पानी में पनपने वाले जो मच्छर हैं वो हमें जो है वो परेशानी दे सकते हैं। इसलिए कहीं पे भी अगर आपको लगता है घर के आसपास पानी जमा हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए। सोते समय मच्छर तो होते ही हैं श्रोताओं बरसात के मौसम में, इसलिए सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या ऐसी जगह सोने के लिए चुने जहाँ पे मच्छर ना आए, और अगर आए भी तो किसी ना किसी तरह से मच्छर जो है आप तक ना पहुंचे, आपको ना काटे। और कोशिश कीजिए कि ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका पूरा शरीर ढका रहे। कई बार हम स्लीवलेस या हाफ बाजू के कपड़े टी शर्ट्स पहने रखते हैं, उसकी वजह से भी जो शरीर के हमारे हिस्से होते हैं बाहर दिखते हैं, वहाँ पे मच्छर जो है वो ईजिली उन्हें स्थान मिल जाता है काटने के लिए। तो पूरे कपड़े पूरी बाजू के कपड़े पहने और मच्छरों को दूर भगाने वाली जो क्रीम्स होती हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि आपको आपका जो बचाव है वो मच्छरों से हो सके। और श्रोताओं ना सिर्फ आपका बल्कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ख्याल भी हमें ही रखना होता है, तो उनकी भी और ध्यान दीजिए कि मच्छर जिस जिस शरीर के उनके बॉडी पार्ट्स पर काटते हैं या काट सकते हैं वहाँ पे आप ये मच्छरों से बचाने वाली क्रीम या डिओड्रेंट वगैरह मिलते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो सभी जानते ही हैं, सभी करते ही हैं, इसमें रेडियो पे आकर के बताने वाली ऐसी क्या बात है। तो श्रोताओं होता यूँ है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कई बार कि यही छोटी छोटी बातें जो है ना ये हम ज़िंदगी में करना भूल जाते हैं या कई बार चूक हो जाती है हमसे, और यही छोटी सी चूक हमारी ज़िंदगी में हमें कई बार बहुत बड़े बड़े परिणाम जो है वो भुगतने पर मजबूर कर देती है। इसलिए इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें ज़िंदगी में रखना होता है, चाहे वो बीमारियों से बचाव है, चाहे वो घर का रखरखाव है, चाहे वो किसी रिश्ते का बचाव है। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को ही नज़रअंदाज करने से चीज़ें बिगड़ती हैं, और उन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से, ठीक रखने से हर चीज़ ज़िंदगी में सुधरती है, संवरती है। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

और ना सिर्फ धर्मशाला बल्कि धर्मशाला के बाहर भी हमें लोग जो हैं वो सुनते हैं सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से। लेकिन हमारी जो धर्मशाला के प्यारे प्यारे श्रोता हैं, खासकर बात करें नरवाना से ऊपर के जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। खनियारा थातरी वगैरह जो गांव है वहाँ पे रेडियो गुंजन का नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। नड्डी भागसुनाग जो हाइट वाले इंद्रुनाग हो गया, और कल परसों सचिन से किसी श्रोता की बात हो रही थी, बहुत दूर तक चंबा तक भी लोग सुनते हैं। खैर कुछ लोग ऐप के माध्यम से भी सुनते होंगे, लेकिन जो स्थानीय हमारे श्रोता हैं वो ज़्यादातर रेडियो का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ऊंचाई वाले हमारे स्थान हैं यहाँ पे हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। तो जितने भी श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। आप यूं ही कार्यक्रमों को सुनते रहें ताकि हम आपके लिए हर रोज़ नए नए बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम जो हैं वो लाते रहें। श्रोताओं, इस वक्त आप हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला एंजॉय कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम में हम फिर से चलेंगे गीत संगीत की ओर। मैं सुनवा रही हूँ आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बरसात के दिनों में होने वाली छोटी छोटी बीमारियां जो कब बड़ा रूप ले लें और हमें परेशानी में डाल दें, इसलिए कुछ घरेलू नुस्खे या यूँ कहें कि छोटी छोटी बातें जिनका हम ख्याल रख करके उन परेशानियों से जो है, उन बीमारियों से जो है, वो बच सकते हैं। श्रोताओं, मैंने पहले भी आपके साथ एक बात साझा की थी, वीडियो उसका नहीं डाला था, और वो ये थी कि वायरल आजकल बहुत फैला हुआ है। और मैं कार्यक्रम से पहले अपनी एक बड़ी बहन है उनसे बात कर रही थी, तो उनसे बात करते करते कई बार ऐसी बातें निकल आती हैं कि मन करता है आपके साथ भी साझा की जाएं। और वायरल की बात चली तो उन्होंने कहा कि तुम बीमार थी तो मुझे ऐसे लगा कि कब ठीक होगी। और मैं बताया था आपको कि शिमला गए थे, हमारा फैमिली टूर था, और बहुत दिनों के बाद अलग अलग जगह जॉब्स करने की वजह से परिवार जब इकट्ठे होते हैं तो लगता है कि चलो क्वालिटी टाइम बिताएंगे, लेकिन शिमला जाते जाते ही मैं बीमार हो गई। और वहाँ जाकर के जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि शिमला में इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है और 8 से 10 दिन लेकर के जा रहा है ये वायरल। और मैं जब इस बुखार से ग्रसित हुई तो वाकई में मुझे 8 से 10 दिन लग गए ठीक होने में। और मेरे कुछ शुभ चिंतक थे जिन्होंने फ़ोन करके हालचाल भी पूछा, और कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं बीमार हूँ या वाकई में कुछ और हो गया है मुझे। खैर, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि शिमला में वायरल था, फिर वो कांगड़ा में आया, उसके बाद मंडी वगैरह में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है वो समय पर वायरल जो है वो फैल रहा है। और छोटी छोटी बीमारियाँ, डायरिया या दस्त वगैरह लगना भी बहुत आम हो जाता है, इसलिए अपने खान पान का ख्याल रखें, पानी उबाल करके पिएं। और जब भी घर से बाहर जाएं तो जैसे कोविड के टाइम में आदत सी बन गई थी कि जब भी हम आ रहे हैं हाथ धो रहे हैं साबुन से, अपने हाथ जो है वो अच्छे से ज़रूर धोएं। और भी छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए। और कार्यक्रम में अब आपके मनोरंजन का ख्याल भी हमें रखना है। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम की बात हो रही है, और गीत कार्यक्रम में आगे आपके लिए मैं चुन करके लाई हूँ। जी हाँ, ताल फिल्म का गीत है और बहुत ही प्यारा सा श्रोताओं ये गीत है, आपको सुनवाएंगे ताल फिल्म का ये गीत। गीत को गाया है श्रोताओं अलका यज्ञिक और सुखविंदर सिंह ने। और इस गीत के बारे में आपसे क्या कहें, ताल फिल्म का गीत है और साथ ही साथ इस फिल्म की शूटिंग जो है वो चंबा में की गई है। और इस फिल्म का भी और इसके गीतों का भी बड़ा एक अच्छा सा कनेक्शन हमारे हिमाचल वालों के साथ, खासकर मुझे बहुत कनेक्ट फील होता है इस फिल्म के साथ और गीतों के साथ भी। बाकी गीत भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस फिल्म में बारिश हो रही है, अब हम वो दिखा तो नहीं सकते लेकिन सुना जरूर सकते हैं। ताल फिल्म का ये प्यारा सा गीत अलका याग्निक की और साथियों की आवाज़ों में एंजॉय कीजिए श्रोताओं ये प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी अंशुताओ, ताल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, बरसात के मौसम में जहां छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, वहीं बरसात का मौसम अपने साथ बहुत कुछ अच्छा भी लेकर के आता है। बहुत से तीज त्यौहार बरसात के मौसम में, या यूं कहें कि सावन के महीने में होते हैं, तो सावन के महीने में हम जो तीज त्यौहार हैं उनका भी आनंद उठाते हैं, और बरसात का अपना अलग ही मज़ा होता है। बरसात ज़मीन के अंदर तक जाती है और हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो खेत हैं, और ख़ासकर बरसात के दिनों में धान की रुपाई होती है और पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो बरसात होती रहे तो हमारी धान की फसल जो है वो भी अच्छे से लहलहाती है। तो हर चीज़ का प्लस और माइनस होता है श्रोताओं, इसीलिए हमें बैलेंस बना करके चलना चाहिए और बैलेंस बनाना आना चाहिए। और ज़िंदगी में जिसे बैलेंस बनाना आ गया वो समझो सिकंदर है। तो चलिए श्रोताओं, बातचीत का आनंद उठाते रहेंगे आपके साथ और आपको प्यारे प्यारे गीत भी हम सुनवाते रहेंगे। अब कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 7:55 पर भी। उससे पहले 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरवा में नव निर्मित अग्निशमन चौकी का वर्चुअली किया लोकार्पण, करीब 55,000 लोगों को मिलेगा लाभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव रोकना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। शिमला जिला के चमियाणा में फोरलेन निर्माण के दौरान घर गिरने पर हाईकोर्ट सख्त, प्रभावित को 4 सप्ताह में मुआवजा देने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, ओपीएस में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा शिमला सब्जी मंडी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के नेरवा में नव निर्मित अग्निशमन चौकी का शिमला से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई चौकी शुरू होने से नेरवा और आसपास के करीब 55,000 लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्निशमन चौकी नेरवा के सुचारू संचालन के लिए 17 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
2: में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में फायर चौकी की जरूरत थी, फायर व्हीकल की जरूरत थी, और मुझे खुशी है कि हमने 55 करोड़ रुपए की लागत से फायर डिपार्टमेंट को पूरा मॉडर्नाइजेशन के दृष्टिकोण से आगे कार्य किया है। आज हमने नेरवा के अग्निशमन चौकी का शुभारंभ किया है और 2 व्हीकल्स फायर की उन्हें उपलब्ध करवाई है, ताकि नेरवा के दूर दराज के क्षेत्रों में ये सुविधा उपलब्ध हो सके।
1: इस बीच शिमला जिला परिषद के चुनाव टालने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव की तारीख तय की गई थी तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जिला परिषद सदस्यों को बैठक में शामिल होने के बजाय पंचकुला क्यों ले गए थे। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त ने चुनाव की तारीख तय की थी, लेकिन ये सदस्य उस बैठक में शामिल नहीं हुए।
2: चुनाव तो होना ही है, इसको कोई रोक सकता है? तो निश्चित रूप से होना है। लेकिन जयराम जी, ये बताइए कि आप जिला परिषद वालों को क्यों पंचकुला ले गए, इस बात का जवाब दीजिए। ऐसी क्या घबराहट है? और जगह नहीं थी आपके पार्षद? हमने कभी नहीं इस प्रकार से उठाकर पंचकुला ले जाना, तो डर काहे का? ये तो जिला परिषद के चुनाव है, थोड़ा और समय उनको बेचारों को घुमाएं, पूरे दर्शन करवाएं और उसके बाद वो चुनाव में उनको लाएं, हम उनका स्वागत करेंगे।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि शिमला जिला परिषद के चुनाव में जनादेश हार चुकी कांग्रेस अब प्रशासन के सहारे जिला परिषद पर कब्जा करना चाहती है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए दोबारा प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार की लोकतंत्र विरोधी कार्यप्रणाली का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 6 जून को सभी 25 निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली और कानून के मुताबिक इसके तुरंत बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन बैठक को बिना कोई कारण बताए स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बार बार बैठकें बुलाकर चुनाव टालना संयोग नहीं, बल्कि जनादेश को बदलने के लिए चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की राजनीतिक जिद के कारण निर्वाचित संस्था को पूर्ण रूप से कार्यशील न होने देना विकास को प्रभावित करता है। जयराम ठाकुर ने सरकार से शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को तत्काल करवाने की मांग की है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला बाईपास पर फोरलेन निर्माण के दौरान चमियाणा में मकान गिरने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और गावर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को 4 सप्ताह में 50-50% मुआवजा मकान मालिक रंजना देवी को देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने रंजना देवी के मकान के साथ लगते चंदा देवी के असुरक्षित मकान का आकलन करने के भी निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज चंबा जिला के भटियात विकास खंड के तहत सिहुता में 26 ग्राम पंचायतों के 2030 बीपीएल परिवारों के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान बोल रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने लाभार्थियों से बातचीत कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे मिल रहे लाभ को लेकर फीडबैक ली। कुलदीप सिंह पठानिया ने पात्र परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओपीएस में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेगी। आज पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था के फैसले पर पूरी तरह कायम है और विकास के एजेंडे को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 297 इलेक्ट्रिक बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं और करीब 300 पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से एचआरटीसी के बेड़े से हटाया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि पीजीआई, एम्स बिलासपुर, आईजीएमसी शिमला सहित मेडिकल कॉलेजों व प्रमुख धार्मिक स्थानों के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र ने प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली दौरे से लौटकर आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि शिमला के सब्जी मंडी को करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसमें 150 करोड़ रुपए के पहले चरण को जल्द शुरू किया जाएगा।
3: शिमला का जो सब्जी मंडी है उस पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है और उसको एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत करीबन 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आने वाले समय में शिमला का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है वो भी उसमें होगा। करीबन उसमें 700 गाड़ियों की पार्किंग उपलब्ध होगी और उसके साथ साथ उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पे बनाए जाएंगे। फर्स्ट फेज है करीबन 150 करोड़ रुपए का, उसकी हरी झंडी हमने विभाग की ओर से दे दी है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस अभी चला हुआ है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है ऑन ग्राउंड उसके ऊपर कार्य शुरू।

0: लिए केंद्र ने करीब 240 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
1: जिला कांगड़ा नगरोटा बगवां से रानीताल जो हमारा NH है 303, इसके अपग्रेडेशन के लिए ये मसला काफी लंबे समय से चला हुआ था, जो करीबन 395 करोड़ रुपए की लागत से इसकी DPR बनी है और इसकी भी उन्होंने उस दिन मंत्री जी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल इस जो है वो दी। शिमला जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, ठियोग लुबल कोटखाई और रोडू और चौपाल क्षेत्र को लाभान्वित करेगा, उसके लिए जो है इन प्रिंसिपल करीबन 240 करोड़ रुपए की अप्रूवल उसके लिए हमको प्राप्त हो गई है।
0: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पर दर्ज FIR के खिलाफ भाजपा मंडल सुजानपुर और बमसन के कार्यकर्ताओं ने सुजानपुर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। भाजपा मंडलों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के इशारे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठी FIR दर्ज कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की नाकामियों को उजागर करने पर तुरंत FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन 14 जुलाई को गांधी चौक हमीरपुर में प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी व गाली लिखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी पर FIR दर्ज नहीं की गई तो 48 घंटे बाद पुलिस थाना सुजानपुर का घेराव किया जाएगा। उन्होंने राजेंद्र राणा पर दर्ज FIR को भी रद्द कराने की राज्यपाल से मांग की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। शिमला जिला के नावर क्षेत्र के प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज कई स्थानों पर वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 106 सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेरवा में नवनिर्मित अग्निशमन चौकी का वर्चुअली किया लोकार्पण, करीब 55,000 लोगों को मिलेगा लाभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव रोकना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। शिमला जिला के चमियाड़ा में 4-लेन निर्माण के दौरान घर गिरने पर हाईकोर्ट सख्त, प्रभावित को 4 सप्ताह में मुआवजा देने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, OPS में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा शिमला सब्जी मंडी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय मेरे साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओं, बहुत कम समय बचा है और बातें कुछ एक निकल करके सामने आई है जो चलते चलते आपके साथ साझा करना चाहूँगी मैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रेडियो गुंजन के कार्यक्रमों को हमारे बहुत से प्यारे प्यारे श्रोता सुनते हैं और समय समय पर वो हमें सलाह मशवरा भी देते हैं कि प्रोग्राम में क्या करना चाहिए और किस तरह के प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए। और इस तरह के जब सुझाव आपके आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे एक बहुत ही प्यारे से श्रोता है जिनका नाम तो मैं आने वाले कार्यक्रमों में शायद लूँगी, आज नहीं लूँगी। ऑफिस के जो हमारा जिसमें हमारे लिसनर फ़ोन करते हैं और मैसेज भी करते हैं गाने सुनाने के लिए, उसमें उनके कुछ संदेश पड़े और उन्होंने हमारे RJ हैं शशि, उनकी बहुत अच्छे से तारीफ की और पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा। और बाकी जो अनाउंसर्स हैं उनको कुछ कुछ टिप्स दिए हैं उन्होंने कि उन्हें किस तरह से अपने कार्यक्रम में सुधार करना चाहिए। और कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ एक अनाउंसर्स के बारे में उनको लगता है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए या अच्छे से ट्रेनिंग

लेनी चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब श्रोता खुले दिल से अपनी बात रखते हैं तो हमें भी सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। और मुझे सर आपका ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि हम लोगों में कमियां हैं और हमें अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपने जो शब्द हैं शब्दावली को सुधारना चाहिए, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है। और इन्होंने बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक शब्द कार्यक्रम का सुना होगा, मैं इनको जिस तरह से इन्होंने एक एक बारीकी से उकेरा है कि किस अनाउंसर ने किस तरह से अनाउंस किया, प्रोनाउंस किया, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये पूरा ध्यानपूर्वक सुनते होंगे। और सीनियर सिटीज़न हैं तो स्वाभाविक सी बात है इन्हें दुनियादारी की समझ हम सब से अधिक है, ज़्यादा है। सर आपका सुझाव सर आँखों पे, और मैं मेरी टीम के सारे सदस्य इस वक्त रेडियो गुंजन के माध्यम से ये सुन रहे होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे इस तरह का मौका ना मिले। हम अपने शब्दों को, अपनी प्रोनाउंसिएशन को, या जो भी आपने सुझाव दिया कि हमें होमवर्क करके आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क वाकई में बहुत ज़रूरी होता है जब हम इतने बड़े मंच पर बैठते हैं, इतने सारे लोगों से हम बात करते हैं, और समय कम है श्रोताओं, लेकिन इस बात को किसी और कार्यक्रम में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि ये जो सुझाव होते हैं ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने समय निकाल करके कार्यक्रम सुना और इतना समय निकाल करके इतने सुंदर सुंदर संदेश हमें भेजे, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से आभार। और श्रोताओं अब आपसे ले रही हूँ विदा इसी वादे के साथ कि बहुत

0: छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है
1: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
2: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
3: आज से पानी नहीं, समझदारी बहेगी।
2: जल है तो कल है।
4: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम। सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है। सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है। जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है। जहाँ हर युवा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मस्त मास्क पहना है तूने।
5: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
4: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
5: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
4: एक और एक
5: है ना सर।
4: देना
5: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर।
4: सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
5: समझ गया सर।
4: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
5: सलाम।
4: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात मैं अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है,

0: मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
1: तुझे पूरा यकीन है?
0: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
2: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
3: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
4: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
2: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
5: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
6: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और इसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
5: तुम इतने पैसों को क्या करोगे?
7: अरे बाप रे,

नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। 11 और 12 अगस्त को धर्मशाला के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बंद। पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नशे से दूर रहे युवा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा लगाने का करें प्रयास। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन चौकी नेरवा का किया वर्चुअल लोकार्पण। सुबह सुबह जन समस्याओं के समाधान को मैदान में उतरे केवल सिंह पठानिया। दिल्ली रवाना होने से पहले सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना कुशलक्षेम। अब समाचार विस्तार।

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल के भरमाड़ गांव में स्थित त्रिपुधान धाम प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था स्थलों में से एक है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये प्राचीन धाम वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वाला हर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य अनुभूति का अनुभव करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार त्रिपुधान धाम एक प्राचीन सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि इस पावन स्थल पर ऋषि मुनियों और साधु संतों ने कठोर तपस्या की थी, जिससे ये स्थान विशेष आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से जुड़े इस धाम में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। इस धाम की सबसे प्रसिद्ध लोक मान्यता सर्पदंश से जुड़ी है। वर्षों से आसपास के क्षेत्रों के लोग सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों को यहाँ लेकर आते रहे हैं और मंदिर की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना कराते हैं। ये मान्यता स्थानीय लोक आस्था का विषय है। साथ ही सर्पदंश की स्थिति में आधुनिक चिकित्सा उपचार लेना अत्यंत आवश्यक है। त्रिपुधान धाम का शांत वातावरण, घने वृक्षों की हरियाली और धार्मिक महत्व इसे आध्यात्मिक पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया सोमवार यानी कि सुबह सुबह जन समस्याओं और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरे। सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने सारनू पहुंचकर श्री रविदास मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। इसके पश्चात करीब 7:45 बजे विधायक अचानक सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचे। विशेष बात ये रही कि उन्हें सुबह 8:50 से गग्गल से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेनी थी। इसके बावजूद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात करना और उनका कुशलक्षेम जानना प्राथमिकता समझा। विधायक ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विद्युत उपमंडल नंबर 2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के चलते 11 अगस्त को मनेर, चैतड़ू व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में तथा 12 अगस्त को दाढ़ी बाजार, कबली दाढ़ी व अन्य साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर शटडाउन अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ओपीएस में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं करेगी।

कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की है और सरकार अपने इस फैसले पर पूरी तरह से कायम है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और विकास कार्यों का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुँचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालमपुर में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। उनका कहना है कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए पूरे प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में धर्मशाला, नगरोटा, जसूर, देहरा, पालमपुर और पठानकोट में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि जैसमपुर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। धर्मशाला, देहरा और नगरोटा को इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मेरा युवा भारत, मैं भारत हिमाचल प्रदेश द्वारा युवा स्वयं सेवकों के लिए आयोजित 6 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का कांगड़ा में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, स्वयं सेवा एवं राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ते हुए उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने युवा स्वयं सेवकों के साथ विशेष संवाद किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय को सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं, ताकि उनकी क्षमता का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में हो सके। उन्होंने युवाओं को नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति विशेष रूप से जागरूक करते हुए कहा कि नशा मुक्त युवा ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकते हैं। युवाओं से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने आसपास के युवाओं को भी नशे के विरुद्ध जागरूक करने और नशा मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। युवाओं को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश देते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा एवं नए अवसरों के साथ अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि और कृषि से जुड़े गौरव को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में वर्चुअल माध्यम द्वारा जिला शिमला के नेरवा में नवस्थापित अग्निशमन चौकी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अग्निशमन चौकी केवल आग लगने की घटनाओं से निपटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारी बारिश, भूस्खलन और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि अग्निशमन चौकी से नेरवा क्षेत्र के लगभग 55,000 लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ पर 2 गाड़ियां जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। उनका कहना है कि आग लगने की घटना के क्षेत्र के पारंपरिक लकड़ी के मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बहुमूल्य सेब बगीचों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
6: बेटा तुम याद रखना,
5: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहेंगे।
6: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
7: ये लो भैया पानी।
6: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
8: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
9: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
10: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
9: जल है तो कल है।
11: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

0: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: मस्त मास्क पहना है तूने।
4: थैंक यू सर, वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
3: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
4: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
3: एक और एक
4: है ना सर,
3: देना।
4: बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर।
5: सर सर सर,
3: ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
4: समझ गया सर।
3: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
4: सलाम।
3: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
6: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
7: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
8: तुझे पूरा यकीन है?
7: चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
9: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
6: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
10: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
9: आइए बनाए नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
11: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
12: सही है यार।
11: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
12: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, वो दिलाता। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। बचा 1 लाख रुपए, वो मैं रख लेता।
11: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत था, आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने, नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना।
6: बेटा तुम याद रखना,
5: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
6: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
7: ये लो भैया पानी।
6: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
8: भैया अब जब बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
9: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
10: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी,
9: जल है तो कल है।
11: आजादी के अमृत पर्व की ओर बढ़ते कदम, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्व धर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम से भरा वो भारत।

स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व निकट आ रहा है। आइए तिरंगे के सम्मान, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लें। अपने घर, अपने दिल और अपने कर्म, हर जगह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करें।

किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान मिलेगा।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मस्त मास्क पहना है तूने।
4: थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर।
3: रेडीमेड है या टेलर मेड है?
4: ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर।
3: एक और एक
4: है ना सर।
3: देना
4: बहुत मस्त लगेगा आपके ऊपर। ये ना सर। सर सर सर
3: ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
4: समझ गया सर।
3: हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है।
4: सलाम।
3: ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
5: क्या हुआ मृणाल, आज वॉक नहीं कर रहे?
6: मुझे कुछ कहना है यार। कल रात में अपने बेटे रोहन की कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक पैकेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता था रोहन को अकेले रहना पसंद है, पर मुझे नहीं पता था कि पिछले कुछ महीने से रोहन ड्रग्स ले रहा है।
5: तुझे पूरा यकीन है?
6: मैं चाहता तो आप लोगों को ये बात नहीं भी बता सकता था, पर अगर मेरे दोस्त ही मदद नहीं करेंगे तो मैं अपने रोहन को इस नशे की बीमारी से कैसे बचा पाऊंगा? मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आप सबकी मदद चाहिए यार।
7: नशे की इस जंग को अगर साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे।
5: अच्छा हुआ तूने कह दिया, हम है ना।
8: मेरा एक दोस्त नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ।
7: आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
9: बेबी ये देखो, एक आदमी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है।
10: सही है यार।
9: अच्छा सुनो, अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगती तो आप इतने पैसों का क्या करते?
10: मैं सबसे पहले जो तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट पसंद है 3 करोड़ वाला, हा? वो दिला। उसके बाद तुम्हारी फेवरेट गाड़ी 1 करोड़ वाली, वो तुम्हें दिलाता। और फिर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए शॉपिंग के लिए देता। और उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है वर्ल्ड टूर का 49 लाख वाला पैकेज, वो दिलवाता। 1 लाख रुपए वो मैं रख लेता।
9: तुम इतने पैसों का क्या करोगे?

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: आज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।